0: ये मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03

तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों की बारिशा से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजब दंदल तमाम खूबसूरत मासूम सोने समात उनके मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। पुरकुल दुआ के समंदर चाहतों की बारिश और लाजवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागते जमीन से आसमां तक जिंदगी से मौत तक जहाँ से दर्द हम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोर और मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड एज स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम व्हाइट एश एंड एज स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड एज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आपकी खूबसूरती के राज जनाब इसमें छुपे हुए। अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती को हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी, क्या तरीके कार होने वाले हैं और क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि आपको बताई जाएंगी इस प्रोग्राम के अंदर, सब कुछ बताएंगे और आराम से बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे और साथ ही साथ कहते ना कहते नहीं जल्दी किया है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी, अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है और यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, प्यारी प्यारी समातें, प्यारी प्यारी खूबसूरत से लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जी साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंतकेफ हालत उन कैसे ही आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि पूरी 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें करने वाले हैं। तो इतनी सारी बातें मैं तो करूंगी, आप भी इतनी सारी बातें करने के लिए जरा रेडी शेडी हो जाइए, बातों के सिलसिले को जारी और सारी रखा जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिद्रा आली बॉस, आपके होंठों पर 440 उल की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत ही प्यारा सा कलाम सुन के और जो ना वापस आकर आप लोगों को बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरत होती रहिए।

समझ रहे हैं। तो सवाल कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं ऐसी ऐसी कुछ बातें होती ना जिनको हम सोचते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सवाल थोड़ा आप लोगों के जहन को मुतासर करने वाला है। और आपने मुझे ये बताना है कि आपके सामने एक जंगल है जहाँ अंधेरा भी है और रोशनी भी है एक साथ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल जी, आप मुझे बताइए। एक आपके सामने जंगल है, ठीक है, जहाँ पर अंधेरा भी है और रोशनी भी है एक साथ ही, ये बताइए कैसे मुमकिन हो सकता है? बताइए जल्दी से। अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मर्तबा रोजाना, या फिर आप घुनने वाले लिसनर से, यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके सुनने वाले लिसनर से, तो क्या करेंगे? अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो के लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा है। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, पोस्ट को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, ठीक है। सिर्फ कमेंट करना जरूरी नहीं होता, बल्कि पोस्ट को लाइक और शेयर करना भी जरूरी होता है। तो लाइक और शेयर कीजिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है। और सवाल कुछ इस तरह है कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपके सामने एक जंगल है जहां अंधेरा भी है और रोशनी भी है दोनों एक साथ, ये कैसे मुमकिन है? बताइए जरा। मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, इसका जवाब आप मुझे बताने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है ना, वो अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हम जिक्र करें या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करें, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है और क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देती है, तो वो आपको पूरे प्रोग्राम में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट मौजूद है और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट मौजूद है। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है, व्हाइटिश लवली क्रीम मिल रही है जो कि फेयरनेस क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है एक्नी का सोल्यूशन, और व्हाइटिश ब्यूटी सोप है, व्हाइटिश फेस वॉश है, व्हाइटिश लोशन है, व्हाइटिश हेयर रिमूवल लोशन है जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है, उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम है एंड डी स्किन फेस वॉश है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजिली आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, ना मिलने की सूरत में आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ओके जी, तो नंबर के ऊपर रابطہ जरूर कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। आपको कहीं ऐसा ना हो कि भाई सोचें कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे परचेज करेंगे, ये क्या होगा, कैसे होगा, तो बस आप इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। चाचा खालिद जूनी जो सबसे पहले हमारी पोस्ट पर मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम चाचा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं, मजे में। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मौला अली सलाम मदद, कहते प्लीज प्लीज मूंछड़े को दियो जलायो वा, जोर केडो हवा लगायो वा, आय हाय भलो गानो हलाईंदा सी। उन खां अलावा चाचा खाले तमा सलाम डिना हिन मीर इरफान सियाल साहब के, सो ओके वेलकम। और हैं जी गुल मोहम्मद रिंद हमारे साथ, गुल मोहम्मद रिंद भाई आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और उसके अलावा हैं यहाँ पर हमारे साथ भक्त अली सियाल भाई, आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। चाचा खालिद कहते हैं प्रोडक्ट्स सेंड मी स्पेशली डी स्किन फेस वॉश, ओके ओके वो आपको भेज रहे हैं, क्या बात है, ये मोहब्बतें वाकई कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं और बढ़नी भी चाहिए, अच्छी बात है। और हजार खंड तो ये हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, हजार भाई छाला तांजो खुश आयो, अच्छा ता असाजे प्रोग्राम जो इंतजार कयो पया मोहब्बतू आए ता भाईरन जो, मोलाई मुजाहिद बुजार हमारे साथ मौजूद है टूप चूसल से, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं जी, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, और आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हजार भाई कहते हैं कि हम आपका शो शौक से सुनते हैं, थैंक यू थैंक यू। और फहीम कहते हैं चलिए आप लोगों की साथ वाली कन्वर्सेशन चल रही है, ओके जी ओके ओके। और साथ साथ किशोर भाई आ चुके हैं, सलाम अदा खुश आयो, चंगा भला सब मजे में, ताँ बदा की आयो मजे में चाक चंगा भला। और मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू शो मोहम्मद जमान भाई। और हैं जी मोहम्मद ताहिर लुंड भाई,
प्लीज मिले लगी तो प्यार जे काबिल ओके आई विल ट्राई तमा जो गानो हलान जे कोशिश कना सी साजे तो सेंट सुमरो हमारे साथ मौजूद है मिठो देरो से तमा सा के जॉइन कयो है मोहब्बतू आहन मिठो देरो में मिलन था कोन ही प्रोडक्ट जे बुधाया थी मके यो बुधाय जो प्यारा भा उन का अलावा फहीम हमारे साथ हैं थैंक यू सो मच और हैं जी आप जितने भी लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए मोतिया सेठानी हमारे साथ मौजूद हैं वालेकुम अस्सलाम और

0: अनवर भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और साथ साथ डायल करते जाइए 03-15-799-0595 और ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, टॉपिक को फॉलो कीजिए और बताइए कि एक आपके सामने जंगल है जहाँ पर अंधेरा भी है और रोशनी भी है दोनों एक साथ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना, मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569 03-00-33-8569।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

लेकिन अगर देखा जाए जो प्रोडक्ट्स आपको बताए जाते हैं अगर वो उस तरह के नहीं हो जैसी आपकी स्किन है तब थोड़ा सा मसला बन जाता है। और हम ये चाहते हैं कि आपकी स्किन के साथ कोई मसला ना हो, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे, आप हमेशा खूबसूरत रहें, तो आपने इस्तेमाल करना है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी जरा खुलासा करते हैं कि ये जो जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है। तो अगर हम व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं या फिर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को मैं बता दी चलूं, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है, व्हाइटनिंग नाइट क्रीम है। इसका इस्तेमाल आप रात के टाइम करेंगे और साथ साथ ये टीनेजर्स के लिए है, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है उनके लिए है। अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द जो है ना वो फ्रेश होती है, आपकी स्किन को गोरा रंग मिल जाता है, हर किस्म के नुकसान से आपको पाक रखती है और झुर्रियां हो, दाग धब्बे हो, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती है। क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है और मिल्क मौजूद है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि नेचुरल अज्जा से मिलाकर जो है ना वो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी और साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। अक्सर औकात हम ये सोच रहे होते हैं कि खूबसूरती की हिफाजत जो है ना वो करना मुश्किल काम है। बिल्कुल जी ये सही है, आप सही सोच रहे हैं। तो खूबसूरती की हिफाजत अब आप जो है ना कर सकते हैं जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप रात के टाइम करने वाले हैं यानी कि सोने से पहले, और अपना फेस वॉश करेंगे, जाहिर सी बात है। तो फेस वॉश करेंगे तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप भी अवेलेबल है एंड व्हाइट एश फेस वॉश भी अवेलेबल है। अब ये दोनों चीजें हैं, अगर आप साबुन लगाते हैं तो आप व्हाइट एश ब्यूटी साबुन लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो आप व्हाइट एश का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जी व्हाइट एश ब्यूटी सोप जो है वो एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है। अगर फेस वॉश की बात आती है तो व्हाइट एश का जो फेस वॉश है वो विटामिन सी से तैयार किया गया है। और विटामिन सी जाहिर सी बात है आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। तो व्हाइट एश का जो विटामिन सी से तैयार किया गया फेस वॉश है या कि स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है और साथ साथ इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अपना दिल खुश रखिए और स्किन को भी खुश रखिए और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। और साथ साथ वो इतने प्यारे प्यारे लोग जो कि भाई एक्ने की वजह से परेशान बैठे हैं, एक्ने की वजह से अगर आप भी परेशान बैठे हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आपके पास मौजूद है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप लोगों के लिए मार्केट में आ चुका है। इसकी सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो है ये सिर्फ आपके चेहरे के एक्ने को नहीं खत्म करता बल्कि आपके चेहरे पर जो डार्क सर्कल्स हैं, निशानात हैं एक्ने के, या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इतने सारे निशान अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब यूं जनाब चुटकियों में उन्हें खत्म कर देगा। आपकी स्किन बन जाएगी क्लियर, क्लीन और ब्यूटीफुल, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है। आयुर्वेदिक फार्मूले का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सारी चीजें नेचुरल ऐड की गई हैं और जड़ी बूटियां ऐड की गई हैं जो कि आपकी स्किन को जो है ना वो फ्रेश लुक देती हैं, आपकी स्किन की हिफाजत करती हैं और आपके चेहरे पर जितने मसले हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जैसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के टाइम ही कीजिएगा और लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिएगा लाजमी, अच्छे से फेस को क्लीन कीजिएगा, हाथों को क्लीन कीजिएगा, देन अप्लाई कीजिएगा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब। और साथ साथ यहाँ पर बारी आती है मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, यस जे हो व्हाइट एश लवली क्रीम की। ये प्रोडक्ट पता नहीं क्यों मेरे दिल के इतने करीब है ना कि मैं अगर सोचती हूँ ना, मेरे पास जितने भी ऐसे लोग हैं अराउंड देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बाबा असा कोई प्रोडक्ट ना हणंदा आहियूं, कोई प्रोडक्ट अगर तव्हां न हणंदा आहियो, सफ़ा तव्हां सादा आहियो, पंहिंजी ज़िंदगीअ खे स्मूथली गुज़ारियो पिया, त तव्हांखे व्हाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु मुंहिंजे चवण ते हिकु मरतबा लाज़मी करणु घुरिजे। छो त व्हाइट एश लवली क्रीम जेका इहे वाइटमिन सां भरपूर फार्मूलो आहे, हिन जे अंदरि 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल एड थियल आहिनि, 30 समुझो था, जंहिंमें स्पेशली वाइटमिन B3 आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन डी आहे, ऐं हुन खां मज़े जी ॻाल्हि रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयार थियल, जंहिंजे अंदर सनक्रीम बि एड आहे। सनस्क्रीम जी तव्हांखे अलॻि सां ज़रूरत पवंदी आहे, सनस्क्रीम तव्हां चाहींदा आहियो, सोचींदा त बाबा अॼु ॾींहं ताईं मूंखे का सुठी सनस्क्रीम न मिली आहे। ॾिठो वञे त अगरि तव्हांजी स्किन बि ईअं थोरी कॉम्प्लिकेटेड आहे ऐं तव्हांजी स्किन बि सेंसिटिव आहे ऐं तव्हांजी स्किन खे बि बाबा सनस्क्रीम सूट नाहे कंदो, त तव्हां व्हाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। व्हाइट एश लवली क्रीम न सिर्फ़ु तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी बल्कि तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट बि कंदी सिज जे किरणनि खां, सिज जे नुक़सानदार जेके असरा
हमेशह तव्हांजी स्किन थींदा आहियूं उन्हनि खां ऐं तव्हांजी स्किन हमेशह ग्लो कंदी रहंदी तव्हांजी स्किन ख़ूबसूरत रहंदी छो त तव्हां इस्तेमालु करे रहिया आहियो वाइट एज लवली क्रीम ऐं तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न शिमरी इफ़ेक्ट बि अची वेंदो सो रोज़ाना तव्हां इस्तेमालु कंदा सुबुह जो हणो राति जो हणो मंझंदि जो हणो जंहिंमहिल दिलि चवे हणो तव्हां कोई बि कमु कयो था तव्हां काॾे वञो था कोई पार्टी आहे कोई फंक्शन आहे कोई शादी आहे गर्मी जो मौसम आहे तव्हां मेकअप नथा करे सघो त पोइ तव्हां इस्तेमालु कयो वाइट एज लवली क्रीम बस नालो ई काफ़ी आहे ओके जी और सासा डायल करती रहिएगा 03 15 799 0595

ओके जी, प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए। और अनवर भाई कहते हैं कि जेकर को मानो मुखा नफरत करे तो वो हुन जो मसलो आए मुंजो न बिल्कुल या सोच होजन घुर्जी अमाजी दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, कैसी है, ठीक ठाक है। किशोर भाई कहते हैं डिप्रेशन, हाँ भाई डिप्रेशन ही चल रहा है। कुर्बान अली कमरानी हमारे साथ मौजूद है। गुलाब गुल बहार नाइस प्रोग्राम, ओके जी थैंक यू, आपको वेलकम कहा जाता है। इमदाद अली बलोच भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक ठाक है। और मोहम्मद ताहिर लुंड भाई वालेकुम अस्सलाम। विलेज वलीदाद खान लुंड नजद से ठारजा से प्रोग्राम लाजवाब आहे तवान जो सो मोहब्बतू प्यारे भाजू प्रोग्राम बुधो पया तवा तवा के प्रोग्राम वणे पयो पोस्ट के लाइक शेयर कंदा हलो। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि ऐसा ऐसे मुमकिन है कि वाइट एज लवली क्रीम शो है जहां सिद्रा मुस्कान रोशनी है और समथिंग इज डार्कनेस व्हिच इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ योर शो सिडू जी योर टॉपिक आंसर। अच्छा बात समझ आ गई क्या कहना चाहते हैं। चलिए

0: रोड तो ठहराया।
1: हाँ जी पर्सनली
0: गिट्टियां में है रोड तो ठहराया।
1: ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। एम अंसारी हमारे साथ है। अंसारी साहब कहते हैं सलाम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम जी, आया नू, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, ग्रेट होस्टिंग में मार रहे, थैंक यू सो मच सर। और अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से, आप हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद। और ये है साजिद हुसैन सुमरो, वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। किशोर भाई कहते टॉपिक बता दिया है लेकिन अंधेरे की वजह से आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए रोशनी में ले जाओ। सही है बाबा। अच्छा मुलायम मुजाहिद तमा गाने जी फरमाइश कही, ठीक है हलैंड जी, कोशिश करना सी। एम अंसारी कहते हैं ये टॉपिक पर, नीचे दरख्तों की वजह से अंधेरा है लेकिन ऊपर से बड़े खंबे चाइना वालों के सोलर के लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से रोशनी भी है और अंधेरा भी है। ओके आपने आंसर दिया है जो कि सया सया तान जवाब दीदा वणो मां तां के लास्ट में बुधाईदम तने जो जवाब छा हो। पागलपंती में अपना ही मजा है, मानते हैं नहीं मानते, ना माने।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, कंजूसियां मत किया करें. सही है. और मुझे बताइए कि आपके सामने एक जंगल है जहाँ पर रोशनी भी है अंधेरा भी है दोनों एक साथ, कैसे? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से. अच्छा, फहीम कहते हैं कि टॉपिक के दिन के वक्त जंगल में दरख्त इतने गहरे होते हैं, घने होते हैं कि जमीन पर अंधेरा होता है, लेकिन जहाँ जहाँ पत्तियों के बीच से खुला है वहाँ से रोशनी की धूप की किरणें नीचे गिर रही हैं, तो अंधेरा और रोशनी दोनों साथ साथ. सही है भाई. अच्छा, एक बाल आशारी हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद प्यारे भाई. दर्दे दिल कहती है तेरी मुस्कुराहट में छुपी है कोई बात, वरना यूं ही कोई मेरे दिल पर राज नहीं करता. अल्लाह जाई बुदा.

ओके जी ओके, क्या बात है किशोर भाई। ये टॉपिक मेरे ख्याल में ये तब मुमकिन है जब जंगल बहुत घना हो, जहाँ सूरज की रोशनी तो हो पर जमीन तक सिर्फ अंधेरा और साए पहुंचे, या फिर रात के अंधेरे में जुगनुओं की रोशनी हो, दोनों। मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। सही है, आप जवाब देते जाइए। और जहीर अब्बास हमारे साथ है, भाई गुड आफ्टरनून। उदास लड़की हमारे साथ हैं, क्या बात है, आप बड़े दिनों के बाद मोहतरमा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है। वालेकुम अस्सलाम, मौलाना इस्लाम अदद, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं।

अब्दुल खालिक गबोल भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। कहते भाजी अभी तक हमारे सिटी में नहीं अवेलेबल हुए प्रोडक्ट्स, भाईजान जो नंबर बताया जा रहा है उसके ऊपर एक मरतबा राबता करके देखिएगा, ठीक है। उनको बताइए कि आपके एरिया में नहीं मिल रहे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और आपने डायल करना है 03-15-799-0595। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं। ओके जी, अब्दुल रजाक भाई आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। निदली कहती हैं कि ओ वाओ जी, स्किन फेस वॉश भी है क्या, मैं जरूर यूज करूंगी। यस, आप यूज करके देखिएगा, अब हर जगह अवेलेबल हो चुका है डी स्किन का फेस वॉश, तो आप परचेज कीजिएगा। अच्छा, वीरू मल मेंगवार हमारे साथ कहते हैं, नाइस शो, आप कैसी हैं सिद्रा, मीरपुर खास से सुन रहे हैं आपको, बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास वालों को वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा जी हमारे पास एक और गाना है जो कि हम आपको सुनाएंगे, ये वाला गाना।

ओके जी, आज मैंने कॉल्स भी लेनी है तो आके कमेंट्स में जल्दी से खत्म कर लेती हूँ। और निदली कहती है कि मैं कुछ दिन क्या गुम हो गई, ये क्या से क्या हो गया। इसलिए कहती हूँ मत गुसाया करें। किशोर भाई मानते हैं ना, अब्दुल रजाक केसर हमें सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर अब्बास भाई तमाम जो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया। और हजार खान जतोई भाई कहते हैं टॉपिक दिन में सूरज की रोशनी और रात में चांद की रोशनी होगी ना जंगल में। हाँ सही सही, समझने में थोड़ा वक्त लगा। निदड़ी कहती है कि शीजा सुनो तो, कल मैं भाई के साथ आ रही थी घर और भाई का हाय अल्लाह क्या बात है। किशोर भाई बड़े फेमस हो गए मुझे ये लग रहा है आजकल। ए मंसारी कहते हैं एग्रीड, पागलपंती में अपना मजा है, शऊर इंसान को बहुत ही अजियत देता है। ओ यह गाल का यार नहीं। अली अकबर ब्रोही भाई में सुन रहे हैं सकरेंट से, आपको वेलकम। मोहम्मद मीरन जखरानी भाई, जेकब अब्बासी, मरसद नाजुदी, खुश आमदी।

ओके जी, लुबी भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं। सिडो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ। नाइस यो सिडो, कोई अच्छा सा गाना मेरे नाम कीजिएगा। ओके जी, डन हो गया।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे हैं और साथ साथ इरम हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं कि मुझे दिलबर दोस्त। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आप टेंशन मत लिया करें इतनी ज्यादा। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महरी, वालेकुम अस्सलाम बाजी। वाइटेश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है और सॉन्ग सुनाए हो मेरा चन्ना का। ओके, और उनका अलावा मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर और शुए महर हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू। प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। पाक आर्मी से हैं आप हमारे साथ, स्वीट शो है और कहते हैं इस वीक के सारे शोज एक से बढ़कर एक थे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आई एम ग्लैड। और ये कहते हैं हमारे साथ मेरी छोटी बहन कुलसुम भी आपका प्रोग्राम सुन रही है और मेरी अम्मी भी आपका प्रोग्राम सुन रही हैं और गुजारिश कर रही हैं सॉन्ग चलाइएगा। चले, मैं कोशिश करूंगी आपका गाना चलाएंगे, लेकिन आपने एक ही मैसेज को इतनी मरतबा शेयर कर दिया कि मेरा पूरा जो पैनल है ना वो भर गया है। तो एक मैसेज को एक मरतबा शेयर किया करें और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, आपकी सिस्टर भी और आपकी अम्मी जान भी खूबसूरतियां ही खूबसूरतियां होनी चाहिए भाई जान। और डायल करते रहिए 03-15-799-0595। ओके जी, प्रोग्राम सुनते रहिए और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: गालियूं जारी आहिनि अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जी दावा। नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त वॉशिंगटन ऐं तहरान में टेक्टिकल सतह जूं ॻाल्हियूं शेड्यूल मूजिब जारी आहिनि। तहरान सां ॻाल्हियूं कामयाब थियूं त तहरान बुनियादी तौर ते तब्दील थी वेंदो। जेकॾहिं ईरान सां ॻाल्हियूं नाकाम थियूं बि त अमेरिका मज़बूत पोज़ीशन में आहे, ईरानी कार्रवाई ते अमेरिका फ़ौजी रदि अमल ॾींदो।

0: ईरान जो मुफ़ाहमती यादाश्त ते मुकमल अमल ताईं अमेरिका सां वधीक ॻाल्हियूं करण खां इनकार। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाफ़ चयो आहे त मौजूदा मुलाक़ातुनि जो मक़सदु एमओयू तहत कयल वाइदनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइण आहे। लबनान जंग जे ख़ात्मे जे लाइ ईरान अमेरिका ऐं लबनान जी गॾियल कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो आहे। आबदा हरमूद असांजी ताक़त आहे। मिज़ाइल प्रोग्राम ऐं यूरेनियम वारे मामले ते को बि ठाह न कयो वेंदो। चीनी परदेह वज़ीर वांग यी ऐं सऊदी हमनसब फैसल बिन फरहान जी बीजिंग में मुलाक़ात। बितरफ़न लाॻापन समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि पारां अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती यादाशनामे ते अमल दरामद करण ते ज़ोर भरियो वियो। चीनी परदेह वज़ीर चयो त ॻाल्हियूं ख़िते जे अमन जे लाइ अणटर आहिनि। जटादार अमन जे लाइ सऊदीअ सां गॾिजी किरदार अदा करण जे लाइ तयारु आहियूं। सऊदी परदेह वज़ीर चयो त वन चाइना पॉलिसी जी हिमायत कयूं था। चीन सां बितरफ़न लाॻापन खे हथी वठाइण जा ख़्वाहिशमंद आहियूं।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजी दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आवाज बहुत
1: थैंक यू सो मच, थोड़ी सी और तारीफ कर दे मेरी।
0: आप सभी बहुत प्यारी,
1: थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत
0: मेरे लिए ना सॉन्ग प्ले करें।
1: कौन सा? कौन सा गाना?
0: लड़की है या जादू,
1: वो लड़की है या जादू। ओके ओके,
0: शो में अक्सर आप प्ले करती हैं ना
1: जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना, आपके लिए लाजमी लगाएंगे। ओके, कौन सी दोस्तों को याद करेंगी और मुझे ये बताएं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं?
0: मैंने आपको बताया था मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती।
1: अच्छा, कुछ इस्तेमाल
0: अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी स्किन दी है।
1: वो तो ठीक है, इसका हल और सोल्यूशन भी बताती हूँ कि उम्र के साथ साथ इंसान की स्किन को प्रोडक्ट की जरूरत होती है।
0: और मैं
1: जी जी मैं पहचान गई थी आपको, लेकिन मुझे आवाज कट होने की वजह से ऐसा लगा कि आपने अपना नाम अस्मा बताया।
0: मैं आपको ना
1: जी, अच्छा क्या बात,
0: मुझे सही तरह बात ही नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं आपके बात कर सकूं।
1: चले ये अच्छी बात है कि आपकी दोबारा भी कॉल लग गई। चले
0: ऐसी,
1: ओके थैंक यू सो मच यास्मीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी। ऐसी आप कॉल ट्राई करती रही, आपकी कॉल मिलती रही और हमसे बात करती रही और हमें अच्छा लगता रहे। और आप भी कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर है 0332231322। सो नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉलर, देखेंगे कौन मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, केयर मौजूदा ठीक है भा? ओके, प्रोग्राम बुधो प्या? नालो छा है असाजे प्रोग्राम जो?
0: नालो किरी न गयाने?
1: हाँ हाँ, बुधायो?
0: जी जी
1: जी जी छा, बुधायो नालो। चलो जबरदस्त जबरदस्त, केड़न दोस्तन के याद करो प्यारो भा? चलो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारा भा, तां कॉल कई मोहब्बत है तां जो समझ घणो लईंदा सी। आई तो भी कॉल करे सको था, कॉलिंग नंबर है 0332231322888। ही नंबर जो आ कुछ मानू वाकई डा हुंदा है जेके भई साधड़ा हुंदा है जेके इंग्लिश में नंबर समझ में नहीं दो आए। सो मैं कोशिश कंदम तो सिंधी में भी नंबर ता के बुधाई थी रहा, पर फिलहाल तो सिंधी में मुखे पाणी न दो। नेक्स्ट कॉल वटुंदा आई दिस इन द नेक्स्ट कॉलर के रस से गड मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: وعلیکم السلام،
1: کیر ماجو؟ الحمدللہ، تا بدایو نالو، بدایو پنجو
2: نالو شام دا نمبر ہے بریک آڈیو سنٹر بلا لسیو نے
1: ہاں
2: دوسرے کو انو سے کام
1: ہاں اوکے پروگرام بدو پیا
2: جی بدو نو ایف ایم باپ دے
1: اوکے ائی بدایو مکھے تے ٹاپک بدو تا چھا جنا ٹاپک تے
2: रोशनी आयो
1: अंधेरो चमचा भी जरूरी चमचन का सवाल तो मानी भी ना आयो खाईंदा चमचा जरूरी न असाई जिंदगी में ताके केड़ी खबर जी जी मुखलिस मानू मना पासे थी भला लगंदा है केड़न दोस्तन के याद कंदा जी। ओके ओके, सो टाइम थियो आहे हिते, भई एतिरो जल्दी टाइम छो गुज़री वेंदो आहे? जॾहिं कॉलिन वठण ते दिलि चवंदी आहे तॾहिं टाइम जल्दी तेज़ी सां गुज़रंदो वेंदो आहे। सो हाणे कॉलिंग वारो जेको सेगमेंट आहे हुनखे थोरो टाटा बाय बाय कंदासीं, ऐं हाणे जेको आहे सो वञूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, उनखां पोइ वापसी तव्हांजी मोटी अचूं था। तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो, तव्हांजो असांजो साथ पूरी पूरी टे बजे ताईं। सो मौजूदु रहो ऐं ॿुधंदा रहो ऐं असां सां गॾु रहो। मां ओही वञी ओही मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग वाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-38-65453
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-35-92120
5: السلام علیکم ادا.
6: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
5: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا؟
7: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
5: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
6: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
7: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
6: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
8: 03013992836.
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: जबरदस्त।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधिक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 583 8569।

अच्छा फहीम कहते माई ने चवे से छोकरी चे से नाराज थी दवा वाकई वाकई छोकरी छोकरी किशोर बाकी थे अदी जे मुंह मां ही निकरण वारो तो वठ वठ मर हकीकत में बहुत कुछ है जो मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती यदि कहती हम तो 2018 वाले हैं जलवाई अपना वाकई बाबा तांजो जलवो आए आई मोमन समान भा बिल्कुल सिंधी में नंबर बुधाईना जी सबने के बुधाईना जी आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हेलो तमाम

अच्छा बिलाल अली भी आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, खुश आमदीद कहते हैं। शायद वो बच्चों गानों बिल्कुल ना के बुतराई था ना गाने का पर। ए मंसारी कहते हैं सिद्धू, ये जिन लोगों की कॉल लगती है ना, इनसे पूछना ये था कि कौन सा दम दरूद करते हैं कि लग जाती है इनकी कॉल। हमने इतनी बार ट्राई किया लेकिन आपका मिलाया हुआ नंबर मसरूफ सुन सुनकर हम तो तंग आ चुके हैं। भाई कोशिश करें आपकी भी, क्या पता कभी मिल जाए। वैसे मैं ये वाक्य सोचती हूँ कि कुछ लोगों की ना रोज कॉलिंग लगती है और कुछ लोग बेचारे सालों से इंतजार कर रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं।

ओके जी, हमारी प्यारी यास्मीन हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने फरमाइश कर दी इस गाने की। यास्मीन को ये गाना डेडिकेट करते हैं। बहुत प्यारी लिसनर ने बहुत प्यारा गाना फरमाइश किया है, क्या बात है। और आप भी इस्तेमाल कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा रही तो डी स्किन फेस वॉश ट्राई कीजिएगा। ये तो इतना अच्छा फेस वॉश है ना कि जब आप इस्तेमाल करेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि डी स्किन फेस वॉश हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया कि स्किन को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज करेगा कि स्किन को, आपकी स्किन को क्लीन बनाएगा। और जनाब ये मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार किया गया है, यानी कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। तो आप इसे ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ साथ डायल करते रहिए 03 15 799 0595।

0: जादू आ बाबा जादू। ओके जी गोठ उस्मान शर खां करीम बख्शी शर असा सगट मौजूद है भा प्रोग्राम बुधे पयो मोहब्बत हुए तवां जो और कुलसूम हमारे साथ मौजूद है। कुलसूम आपको खुशामदीद कहते हैं। रसूलाबाद से आबिद हुसैन शमानी भाई हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि अंधेरा कुदरती और रोशनी मसनूई आज लगता है सिद्रा मुस्कान। क्या मतलब कल परसों नहीं लग रहा था। बहुत शुक्रिया आपका।
1: वो लड़की है।
0: अच्छा चाचा खालिद हमारे साथ हैं पैनल पर मौजूद, बहुत शुक्रिया जी। आज आपने जो गाना बोला है ना वो जरा थोड़ा सा इंडियन गाना है तो नहीं लगा पाएंगे। और हमारे साथ हैं जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी। बाजी सिद्रा आप कैसी हैं बाजी? वाइट एश क्रीम हिंगोरजा में नहीं मिल रही है। आपका टॉपिक आज हमें समझ ही नहीं आ रहा। आज हमें शेला गुल का गाना सुनाएगा तेरे नाल प्यार हो गया सोनिए। और थैंक यू डेडिकेट ड्राइवर नजीर सोलंगी सोलंगी आसिम अली सोलंगी सराज सोलंगी अल्लाह वसायो एंड मुबशे सोलंगी जी नाले। ओके जी थैंक यू। और हैं हमारे साथ ये शेबाज भाई, आपने इतने सारे मैसेजेस कर दिए हैं सो बहुत शुक्रिया। अच्छा ये विलेज मोहम्मद उस्मान बिरोही सकरेंट से वफा आबिद बिरोही हैं। अंतहाल जेबा में ठीक हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं? ये थे आपका शो सुन रहे हैं सिद्रा। हम पुराने लिसनर्स को याद ही नहीं करती हैं नबा पता याद ही याद आयो आई तां प्रोग्राम में घट शामिल थी ना आयो सो रोज शामिल थी ना कयो तां डेडिकेट कया मुनवर बिरोही अलीकबर बिरोही मोहम्मद हनीफ बिरोही एंड यासीन खंड एंड के बाद आवाज मैसेज मुझे ख्याल में मिसिंग पार्ट आ है। और वकास अली हमारे साथ हैं कहते मैम प्लीज सॉन्ग सुनाई नथो विसरी मुखा नथो विसरी यो गाना तां लाइ सुभाणे पक्क हलाइंदासी। सो थैंक यू तां प्रोग्राम में मौजूद आ है।
1: ओ खुद को यार पाओगे।
0: अच्छा कश्यप हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी छा हाल तवानो खुश आयो। गाना तो सुनाई अपनी पसंद का, ठीक है सब गाना मुझे पसंद आई हलन था एंजॉय कयो। और हैं शोनी कहती है आपकी जान में भी आपके साथ साथ हूँ, आ गई आपके शो में, बड़े चाचू के घर हूँ और आपका शो भी सुन रही हूँ। ओके जी एंजॉय करी। अच्छा ये है टैक्सी स्टॉप मोरो से ड्राइवर कारो सुमरो, अब मुझे नहीं पता भाई अगर मैं आपका नाम गलत रीड कर रही हूँ तो उसके लिए माजरत। नसीम सोलंगी सोहराब और ड्राइवर शमन अली सोलंगी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सुन रहे हैं, प्लीज गाना सुनाइएगा मेरे को इतले दर्द ना दे बाय। ओके भाई आपका गाना भी कल लगाएंगे क्योंकि आज थोड़ी सी देर हो चुकी है। और उसके अलावा शहबाज भाई भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। और हैं जी मायरा भी हमारा शो सुन रही है। और जी फजीला सिंधी भी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम फजीला सिंधी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जी। स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है नहीं बताइए तो, एडी पक्की शो थी भैया।

हाँ जी, मेरी आंखों में देखोगे तो सिर्फ गुस्सा पाओगे। आदिल हुसैन कहती वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? उसे मुफ्त में ही पा लिया किसी ने जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था। वाह वाह वाह वाह। ए मंसारी कहते मेरा एक गाना उधार है आपकी तरफ। सुबानी मदनासी सुबानी। हजार भाई कहते हैं रुले ते गया पर चस बड़ी आई है। यहाँ की कथा वैसे अच्छा। नहीं नहीं किशोर भाई, अगर ऐसा होता तो मैं लगा लेती। वो ऐसा था कि था आई इंडियन। थोड़ा सा ऐसे के लोगों को लगे कि ये थोड़ा पाकिस्तानी है थोड़ा इंडियन, इसीलिए कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जा देंगे ये पाकिस्तानी है या फिर ये इंडियन है। तो बिल्कुल वो गाना वैसा ही था लेकिन वो थोड़ा सा इंडियन है, इस वजह से हम नहीं लगा पाएंगे। और लिखते हैं कि माथे पर लगाकर बिंदी आंखें कमाल लिए फिरते हो, वैसे भी नजरें नहीं हटती तुमसे और तिल वाला गाल लिए फिरती हो। वाह वाह।

अच्छा बिलाल कहते इतनी गुस्से वाली हो क्या मोहतरमा? हाँ कुछ ज्यादा ही। अच्छा एम अंसारी लिखते हैं कि अशकों के अशकों की दहाड़ों से वजू करके एक शख्स को पढ़ा है आयतों की तरह। आए हाय ओ ये कमी खराब है नला। अख्तियार सिंधी भाव वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।

0: रहोगे।
1: वासई वाह वासई मां ॾाढो भलो गानो ॿुधो सी तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो ऐं प्रोग्राम ॿुधो पिया बाबा। वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वञे पियो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां। सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो था या वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो था ॿुधायो कहिड़ो प्रोडक्ट हणो था जे असांखे ख़बर पए बाबा। ऐं जेके जेके माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि अगरि उहे इहो चाहिनि था त बाबा असां अवेलेबल कराइण चाहियूं था असांजे ॻोठ में असांजे सिटी में असांजे क़रीबी एरिया ते नथो मिले त पोइ तव्हां डायल कंदा जनाब 03-15-799-0595 नंबर लास्ट में डायल कयो कॉल कजो या फिर मैसेज कजो उन्हनि खे ॿुधायो त तव्हां किथां आहियो ऐं तव्हां अवेलेबल कराइण चाहियो था वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। ओके जी प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक हलायो आहे मैडम आपदा जी आवाज़ में।

अच्छा किशोर भाई, वैसे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर ऐसी आप बात कर रहे हैं, एक अलग से आप डिमांड कर रहे हैं, तो वो तो दंगे हो जाएंगे। समझदार है।

आजू मोहम्मद सुमान भात आज मोहब्बत हुआ इन प्रोग्राम उधो पया बाबा एसन अरबाणी हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। टॉपिक कहते हैं मेरे ख्याल से जंगल में एक अच्छा चेतन राम हमारे साथ मौजूद है उमरकोट से। आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं प्यारे भाई।

ओके जी, सो आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा, जिस सवाल ने आप लोगों को थोड़ा सा पागल बना दिया, तो उस सवाल का जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा था कि आपके सामने एक जंगल है, ठीक है, जहाँ पर अंधेरा भी है और रोशनी भी है, ये कैसे मुमकिन है दोनों एक साथ? तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड है, इमेजिनरी दुनिया जो होती है ना, जहाँ पर लोग जो भी इमेजिन करते हैं हो जाता है। तो बिल्कुल वो इमेजिनरी दुनिया है। अच्छा प्रोडक्ट यूज कयो बाबा, प्रोडक्ट यूज कयो, देखो प्रोडक्ट यूज न कंदो न केला साईं डोर ईंदव। ओके, सो तव्हां सां मुलाक़ात वरी मुंहिंजी सुभाणे वारे प्रोग्राम में थियण वारी आहे, 1 बजे कंट्री बजे ते तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे जनाब। सो पंहिंजो ओ हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा, ठीकु आहे? हा फ़हीम मल्टी टैलेंटेड हूं मैं। ओके, सो मोकलाणी नाहे बाबू, सिन सलामत, सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: फैसलो कयो वियो आहे आपदा हर मुद असांजी ताक़त आहे मिज़ाइल प्रोग्राम में जुड़े वारे मामले ते को बि ठाह न कयो वेंदो ईरान शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई जी आख़िरी रस्मनि जे शेड्यूल जो ऐलान करे छॾियो ईरान में 6 जुलाई ते आम मोकल जो ऐलान 8 जून ते मुल्क में योम सोग मल्हायो वेंदो ईरानी हुकूमत जे तर्जुमान चयो आहे त शहीद आयतुल्ला अली खामनाई जे बरह जूं आख़िरी रस्मूं 4 खां 8 जुलाई ताईं तेहरान कुम ऐं मशहद में अदा कयूं वेंदियूं शहीद आयतुल्ला अली खामनाई जे बरह खे 8 जुलाई ते मशहद में मिटीअ मां हवाले कयो वेंदो सिंध जी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जे शागिर्दनि जे लाइ 20,000 गूगल केयर सर्टिफिकेशन स्कॉलरशिप जो ऐलान वरी वज़ीर मुराद अली शाह गूगल केयर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 2026 जो इफ़्तिताह करे छॾियो तक़रीब खे ख़िताब कंदे मुराद अली शाह चयो त नौजवाननि खे सहूलियत न पर मुस्तक़बिल जे लाइ दरवाज़ा खोले रहिया आहियूं सिंध जे नौजवाननि खे तब्दील थींदड़ दुनिया जे लाइ तयारु करणु आहे AI ते अॼु ध्यानु ॾींदड़ क़ौमूं मुस्तक़बिल जी क़यादत कंदियूं नौजवाननि ऐं शागिर्दनि जा मसइला हल कया वेंदा वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी परदेह में रहंदड़ पाकिस्तान जे फलाह वारनि मनसूबनि में तेज़ी आणण जी हिदायत वज़ीर आज़म सां ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जे अमलदारनि जी मुलाक़ात शहबाज़ शरीफ़ चयो त परदेह में रहंदड़ पाकिस्तानी मुल्क जो क़ीमती असासो आहिनि खेनि सहूलियतूं फराहम करण जे लाइ क़दम खयां वञनि पाक फ़ौज अफ़गान तालिबान रजीम पारां बलोचिस्तान जी सरहद तां मोकिलियल 4 ड्रोन्स तबाह करे छॾिया पाक फ़ौज जो दुश्मन जे हर अग्राही जो मुंहं तोड़ जवाब ॾियण जो ऐलान ISPR मूजिबि अफ़गान तालिबान रजीम पारां सरहद पार खां बलोचिस्तान जे हदनि में 4 ड्रोन्स मोकिलिया विया जिन खे सिक्योरिटी फोर्सिस कामयाबी सां निशानो बणाए तबाह कयो अफ़गान तालिबान खे दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती बंदि करणु घुर्जे ख़ुदमुख़्तारी ऐं सलामती जे लाइ ख़तरो बणजंदड़ हर कार्रवाई खे नाकाम बणायो वेंदो कराची जी अदालत में BRTE करप्शन केस जी ॿुधणी केस में गिरफ़्तार अॻूणो PD ज़मीर अब्बास जी अदालत में पेश जांच आफ़िसर अदालत खे मुतमैन करे न सघियो अदालत जी तलबीअ ते DG एंटी करप्शन अदालत में पेश ज़मीर अब्बास जे जिस्मानी रिमांड में 3 ॾींहनि जी वाधि अदालत सवाल कयो त छा रुॻो PD जी सही सां पेमेंट थी वेंदी आहे 3-4 माण्हुनि जे सयुनि बाद पैसा जारी न आहिनि थींदा ॿिया माण्हू किथे आहिनि ठेकेदार किथे आहे

0: सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़तम न थी, आबादगारनि जो मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। सिंधड़ीअ में गिरोड़ शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। सामारो स्टाप ते धरणो, पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुबारकपुर भरसां मिर्ज़ा शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो, पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। फ़क़ीराबाद में बि धकड़ शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो, धकड़ शाख जी पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। खैरपुर में टिनि नौजवाननि गुरबत ऐं बेरोज़गारी सबबि ज़हर पी छॾियो, घर थी जोगी हालत में इस्पताल मुंतकिल। ॻोठ डाबरो में लखमीर फुलपुटो बेरोज़गारी खां तंग थी ज़हर पी आपघात करण जी कोशिश कई। ॻोठ नूनारी में नौजवान सुहेल नूनारी बि गुरबत ऐं बेरोज़गारी सबबि ज़हरीली दवा पी छॾी। ॻोठ हाजाना में नौजवान नादिर अली हाजानो बि बेरोज़गारी सबबि ज़हरीली दवा पी आपघात जी कोशिश कई। टई नौजवान घटी वारी हालत में इस्पताल मुंतकिल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385769
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

साजिद एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उधर हर रोज कोई ना कोई एक बूढ़ा आदमी फार्म के लिए दफ्तर आता, मगर पढ़ा लिखा ना होने की वजह से मुश्किल में पड़ जाता। लोग उसको देखते और आगे बढ़ जाते। एक दिन साजिद ने अपना ऑफिस वर्क रोका और एक बूढ़े शख्स का फार्म भरा, उसे समझाया और उसे मुतालका खिड़की तक भी छोड़ आया। पूरा काम सिर्फ 3 मिनट में हो गया। बूढ़े शख्स ने जाते हुए साजिद से कहा, बेटा तुमने मेरा काम नहीं किया, तुमने आज मेरी बेबसी कम की है। चंद माह बाद साजिद के वालिद दूसरे शहर में एक हॉस्पिटल गए। वहां एक अजनबी नौजवान ने उनकी वैसे ही मदद की जैसे कभी साजिद ने उस बूढ़े शख्स की थी। शाम को साजिद ने अपने वालिद से पूछा, वो लड़का आपको जानता था? वालिद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, लेकिन दुनिया अभी अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई। साजिद खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ शायद नेकी कभी जाया नहीं होती, बस रास्ता बदलकर वापस आती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम इन अवर शो। जी मीरपुर खास FM 88 के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सब दोस्त हमारे लेकर आपके साथ, आपकी मेजबान गुलनाज। जनाब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है, बखैर आफियत है। सामिन दुआएं वो फूल हैं जो जिंदगी की परेशानियों में आसानी और कामयाबियों की खुशबू बिखेरती हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह का फजल व करम हमेशा आपके साथ, उसके निगहबान फरिश्ते हमेशा आपकी हिफाजत करें, आपकी जिंदगी में हजारों खुशगवार सुबह तुलू हो। रब करीम आपकी तमाम हाजात और दुआओं को पूरा फरमाए, सलामती ईमान सेहत के साथ आपको लंबी जिंदगी बेहिसाब आसानियां अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जनाब इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं प्यारे से कलाम के साथ। और सामिन आज का मौजूई गुफ्तगू, आज आपसे पूछने वाली हूँ बहुत ही आसान सा सवाल। जब आप छोटे होंगे, आपके बड़ों ने, आपके दादा दादी नाना नानी ने आपकी पढ़ी होगी, और अब जिंदगी के इस जो है जिंदगी के इस मोड़ पे आप उस स्टोरी के अबाउट क्या कहेंगे? मुझे हमने और आपने अक्सर सुना है, आसान सा लफ्ज है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो हम करते हैं हमें वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मकफाते अमल के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपने मुझे आज बताना है। इस हवाले से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना है। आपकी जिंदगी में ऐसा कभी कोई लम्हा आया आपका मकफाते अमल पर जो है 101% जो है ट्रस्ट हुआ और आपने कहा हाँ वाकई फलां वक्त में ऐसा हुआ था और उसके बाद ऐसा भी हुआ था, तो हम मानते हैं इस बात को। बहुत से लोग कहते हैं लफ्जी बातें होती हैं, इसका कोई हकीकत से लेन देन नहीं होता। आप क्या कहते हैं मैं ये जानना चाहूंगी। ये बताने के लिए आपने 03136615688 डायल करना है और मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के एक स्पेस नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। आपने मुझे बताना है मकफात अमल यानी जैसी करनी वैसी भरनी के बारे में आपकी क्या राय है।

0: हो गए, मैंने शायद हमें नहीं वैसे प्ले भी नहीं की अपने प्रोग्राम में, आपने याद करवा दिया. ओके आई विल ट्राई टू प्ले. शायद हमें नहीं, नेक्स्ट कॉलर की जानिब चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम. अभी गिलूरी का खाने क्लास है निकला
0: है. अदा आपको भी वेलकम कहेंगे. क्या बोलेंगे आप टॉपिक के बारे में?
1: अभी टॉपिक का मतलब सुखो है वडड़ा जरा चंदा तो बेजला मना द खदो खोती ने पाड के मना नियत बेजला गलत कदो तो पाज मना लोड़ी दो वो तो ना सी करनी टेढ़ी फेरनी मना ये कहानी बिल्कुल सच्ची है वाला.
0: चले आप भी मानते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है. ओके आप भी दोस्तों को याद कर लें.
1: अभी अभी सोलंगी मेरे भाव बैठो अभी दरबार है कुर्बान के खास के लिए गुलाम है यार है.
0: ठीक है आदा, मेहरबानी, वेलकम एंड थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. आप शामले प्रोग्राम हुए. ओके और जनाब नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. यास्मीन आपको भी खुश आमदीद कहेंगे. आप क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में?
2: तो हमारे साथ भी यकीन अल्लाह पाक अच्छा ही करेंगे.
0: और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो डेफिनेटली बुरा होगा, ये लाजिम है.
2: यकीन आप बिल्कुल अच्छी कर रही है.
0: चले यास्मीन आपकी राय भी हम तक पहुंची, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू.
2: अल्लाह ताला आपको हमेशा
0: सेम टू यू. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. बंडल ऑफ थैंक्स. मुझे दुआओं में याद रखा करें आप लोग. दुआओं की जो अशद ज़रूरत होती है वो सबको ही होती है, सबको, लेकिन स्पेशली मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें. और नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम कहेंगे. कौन बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम. अदा कौन बात कर रहा है? भलीकार चौं था अदा तव्हां खे. कहिड़ा हाल आहिनि तव्हां जा? अलहमदुल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप बताइए क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? चले ठीक हो गया. अदा आप क्या कहेंगे सब सुनने वालों से? ठीक
1: है
0: ठीक है. सबनी सबनी भुट्टो बरादरी आई लिसनर्स के अदा आयास पारा अस्सलाम वालेकुम. ओके जनाब आपकी सलामती ढेरों ढेर. आपकी तरफ भी हम रवाना करते हैं और नेक्स्ट कॉलर को लाइन पे लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ओ माय गॉड. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा आजम साहब? आपसे गुजारिश है रेडियो ऑफ कर दें. आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं ना, रेडियो बंद कर दें. जी
1: काफी दिनों के बाद आपका नंबर मिला है
0: जी.
1: चलो खुशी मुझे कि अल्लाह ने आज हमारी सुनी
0: जी
1: और आपसे बात हो गई.
0: क्या कहेंगे आप टॉपिक के बारे में? टॉपिक सुना है आपने
1: बेटा? जो कुछ आज का टॉपिक है जैसी करनी वैसी करनी, ये अल्लाह की तरफ से यही है कि जैसा करोगे वैसा ही करोगे. हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं.
0: सही.
1: और दूसरी बात ये है बेटा, मैं एक आपसे फरमाइश करूँगा
0: जी.
1: ये एक पुराना गाना है पाकिस्तानी, इतने बड़े जाने कोई नहीं हमारा. मेहरबानी करके बेटा ये हमें गाना सुना.
0: अच्छा, ये किसकी आवाज है?
1: ये बहुत ओल्ड गाना है. इतने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा, दुनिया के चौकों में फिरते हैं बेसहारा.
0: ओह माय गॉड. अल्लाह ताला के होते हुए वैसे आपको ये वाला गाना नहीं सुनना चाहिए.
1: बेटा बेटा ये बहुत ही अच्छा और नसीहत आमोज गाना है. अगर आप इसको सुनेंगे ना तो आपका दिल इस बात को गवाही देगा कि हाँ बाबा ने सच कहा था.
0: चले मैं 4:30 पे पुराने जो हम गाने चलाते हैं वहाँ कोशिश करते हैं, गाना हमें मिल जाता है नेट से, हम आपको जरूर सुनवाएंगे. बहुत शुक्रिया.
1: चलो बेटा मैं इंतजार करूंगा मेरे बच्चे.
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.
1: ओके
0: जी अपना ख्याल रखिएगा. और देखें जी सब लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं ना तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा वजन आ जाता है और मेरी पूरी पूरी पूरी पूरी पूरी पूरी कोशिश होती है जो मैं वैसे ही लिसनर्स की फरमाइश अगर ना भी पूरी करूं, लेकिन जो हमारे साइलेंट लिसनर होते हैं ना जो सालों में कभी हमें पता चलता है कि भाई ये हमें सुनते हैं तो फिर उनकी फरमाइश तो पूरी करनी बनती है. वेल मुंह बंद करने का वक्त है यानी ब्रेक का टाइम हो जाता है. बोलती बंद मेरी कम से कम. ब्रेक के बाद ज्वाइन करती हूँ आपको.

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: गुर्दे की पथरी मसान की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लिए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

वर्ष तक जारी रहने वाले ऐसी बुनियादों पर इनका हल भी तलाश किया। लाहौर किले के पिक्चर वॉल प्रोजेक्ट की माहिर तामीरात और कंजर्वेशन आर्किटेक्ट ज़ीनिया नसीर ने बताया कि पाकिस्तान में तहफ़ुज़ के नाम पर अक्सर पुरानी तारीखी इमारतों को गिराकर नए सिरे से तामीर कर दिया जाता है, जिससे उनकी तारीखी हैसियत असल शनाख्त मुतासिर होती है। उन्होंने बताया शाही किले की पिक्चर वॉल के मंसूबे में इस रिवायत से हटकर असल मवाद और तारीखी आसार को महफूज रखने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दीवार पर मौजूद टाइल वर्क, फ्रेस्को पेंटिंग्स और ईंटों, मिट्टी, पानी, तामीराती मवाद के नमूने हासिल करके इनका तफसीली साइंसी तजिया किया, ये जानने की कोशिश की गई इमारत के मुख्तलिफ हिस्से क्यों खराब हो रहे हैं और इन मसाइल का मुस्तकिल हल क्या हो सकता है। शाही किले की तारीखी दीवार तकरीबन 1600 फीट लंबी है और इस पर मुगलिया दौर का शानदार फन तामीर आज भी मौजूद है। हैरान कुन बात यह है कि माहरीन ने दीवार को नया बनाने की बजाय इसकी असल शक्ल, तारीखी शनाख्त को बरकरार रखने पर तवज्जो दी है और इस मंसूबे में सिर्फ दीवार की सतही मुरम्मत नहीं की गई बल्कि बारिश के बाद निकासी आब के निजाम को भी बेहतर बनाया गया ताकि मुस्तकबिल में दीवार को नमी और पानी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। माहरीन का कहना है तहफ़ुज़ का मकसद तारीखी इमारत को नया बनाना नहीं बल्कि इसकी असल हालत को बरकरार रखते हुए इसकी उम्र बढ़ाना होता है। यही वजह इस मंसूबे में सिर्फ उन्हीं हिस्सों की मरम्मत की गई है जिनके बारे में तारीखी शवाहिद मौजूद थे, जबकि अंदाजों या करास आरइयों की बुनियाद पर कोई नई तस्वीर तामीर नहीं की गई। तो जनाब, ये जो हमारे जो वर्सा है, बहुत ही हमारे कीमती इमारतें हैं, इनकी जो सार संभाल है ना, इसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशत गर्दनि ठाकनि खे निशानो बणायो। ज़रूरी कदम खणंदो रहंदो। भारत अफगानिस्तान जी सरज़मीन तां पाकिस्तान ख़िलाफ़ दहशतगर्द सरगर्मियुनि में मुलविज़ रहियो आहे। भारत दहशतगर्द तंज़ीमुनि जे अफगानिस्तान में सरपरस्ती बि करे रहियो आहे। पाड़ेसरी मुल्कनि में दहशतगर्दीअ खे हथी ॾींदड़ भारत जा बयान खिल जोॻा आहिनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 769 3 8 5 6 9।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320180003।

0: बुलेटिन लहर GFM 88 नेटवर्क
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एटमाट ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल

एलजी सेल कंपनी अजे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।

0: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: दरियाए सिंध की लहर।

अस्मा आपने यकीनन सॉन्ग सुना होगा प्याज, आंसर है ऑनियन. ओके अस्मा आपका आंसर दुरुस्त है, थैंक यू. किन लिखने वाले का गम और सुनने वालों के लिए वाह वाह, किसी के दिल की चोट वही जानता है, अल्फाजों को प्यार से समेट कर कैसे दिल को हैप्पी करते हैं कबीर इरफान वाला. भलीकर चौथा तमा के, थैंक यू. और लफ्जों का चुनाव जो है वो आपकी शख्सियत की अक्कासी भी करता है आई थिंक.

तो जनाब ये मेरा मोस्ट फेवरेट ट्रैक था। लीजा आपने कहा था अपना फेवरेट ट्रैक, तो मेरा फेवरेट ट्रैक मोस्टली आजकल ये वाला गीत है। और बहुत ही प्यारी सिंगर है ये, इनके ऑल टू ऑल सॉन्ग्स मेरे मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स हैं। बहुत खास

पड़ती है डूबती उभरने से पहले। डूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है, मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है।

एक उस्ताद क्लास में दाखिल होता है, ब्लैक बोर्ड पर लंबी लकीर खींच के कहता है, तुम्हें से कौन इस लकीर को हाथ लगाए बगैर इसे छोटा कर दे। सारी क्लास खामोश हो गई। उस्ताद ने नामुमकिन बात कह गई थी, सबने कहा कि ये नामुमकिन सी बात है, लकीर को छोटा करने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, जो हाथ लगाए बिना मुमकिन नहीं है। उसी टीचर ने जो लकीर खींची थी उसी के नीचे एक लंबी लकीर खींच दी, जिसके बाद सबने देख लिया पहले वाली लकीर छोटी नजर आ रही थी। उस्ताद ने उस लकीर को हाथ लगाए बगैर उसे छोटा कर दिया। उस्ताद ने सबक सिर्फ ये सिखाया, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, दूसरों पर तनकीद किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे आगे बढ़ने का

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: बाबत इजलास इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी जोड़ जो फैसलो एनटीए में चेयरमैन के चैनी सूबन आजाद कश्मीर गिलगित जो दौरो करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो तो दरियान के लंघन बोर्ड के रस्तन तक कब्जा खत्म कया वन। कौमी आबी तहफ़ुज़ लाइ वफाकी हुकूमत वही रकम रखी है। बरसातन बोर्ड के तबाहकारियों का बचण लाइ अगुवाट कदम करण जरूरी है। वफाकी हुकूमत गुजल माली साल में सिंध के हिस्से का 83 अरब रूपया घट डिना है। गुजल माली साल 2025-26 में सिंध के वफाक का 175 अरब रूपया मिलना हुआ। कराची में गालाइंदे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो है ता 30 जून 2026 ताई सिंध के वफाक पारा सिर्फ 91 अरब रूपया मिलिया है। सिंध में बलदियाती निजाम मौजूद है जैमें बेहतरी आने की जरूरत है। सिंध में 12 का 18 कलाकन ताई लोड शेडिंग थी रही है। वफाक असा के सोलर विंड जरिए बिजली घर लगाने की इजाजत न दई रो है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दन के थाकन के निशानो बनाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई बाबत भारतीय इल्जाम रद्द कर छा। बड़े तर्जमान पाकिस्तान शहरियों के तहफुज ए सलामती लाए जरूरी कदम खड़ो रहो। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन ता पाकिस्तान खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस रो है। भारत दहशतगर्द तंजीमन की अफगानिस्तान में सरप्रस्ती भी कर रो है। पाड़ेसरी मुल्क में दहशतगर्दी के हथी डींदड़ भारत जहा बयान खिल जुगा। पाक फौज अफगान तालिबान रिजीम पारा बलोचिस्तान की सरहद दा मोकिल 4 ड्रोन तबाह कर छा। पाक फौज जो दुश्मन की हर अगराई जो मुंह तोड़ जवाब देने जो ऐलान। ISPR मूजिब अफगान तालिबान रिजीम पारा सरहद पार का बलोचिस्तान की हदन में 4 ड्रोन मोकिलिया वा जिनके सिक्योरिटी फोर्सिस कामयाबी से निशानो बनाए तबाह कर। अफगान तालिबान के दहशतगर्दन की सरप्रस्ती बंद करण घुर्जे। खुदमुख्तारी ए सलामती लाए खतरो बणजंदड़ हर कार्रवाई के नाकाम बनाए वो। अमरीका ईरान विच में टेक्निकल सतह से दोहा में गालियां जारी हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जी दावा। नायब सदर जेडी वेंस वाशिंगटन तेहरान में टेक्निकल सतह जो गालियां शेड्यूल मूजिब जारी हैं। तेहरान से गालियां कामयाब थियं तो तेहरान बुनियादी तौर से तब्दील थी वेंदो। जेकॾहिं ईरान से गालियां नाकाम भी थियं तो अमरीका मजबूत पोजिशन में है। ईरानी कार्रवाई से अमरीका फौजी रद्द अमल डींदो।

असांजी ताक़त आहे मिसाल प्रोग्राम ऐं यूरेनियम वारे मामले ते को बि टा न कयो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालिबाफ चयो आहे त मौजूदा मुलाक़ातनि जो मक़सदु एमओयू तहत कयल वाइदनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइण आहे। लेबनान बाबति ईरान, अमरीका ऐं लेबनान जी गडि॒यल कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

0: सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जे आखिरी रस्मन जे शेड्यूल जो ऐलान करे चलियो। ईरान में 6 जुलाई ते आम मोकल जो ऐलान, 8 जून ते मुल्क में योम शोक मल्हायो वेंदो। ईरानी हुकूमत जे तर्जुमान चयो आहे त शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मड़ जूं आख़िरी रस्मूं 4 खां 8 जुलाई ताईं तेहरान कुम ऐं मशहद में अदा कयूं वेंदियूं। शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मड़ खे 8 जुलाई ते मशहद में मिटी मां हवाले कयो वेंदो। कराची की अदालत में बीआरटी करप्शन केस की बुधनी। केस में गिरफ्तार अगुणो पीडी जमीर अब्बासी अदालत पेश। जांच ऑफिसर अदालत के मुतमिन करे न सको। अदालत की तलबी ते डीजी एंटी करप्शन अदालत में पेश। जमीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की बाद अदालत सवाल किया रुगो पीडी की सही से पेमेंट थी वेंदी है। 3-4 मानुन की सही बाद पैसा जारी थींदा आहिनि। बिया मानू किथे आहिनि, ठेकेदार किथे आहे। सिंध में ज़रई पानी की कोट खत्म न थी। आबादगार जो मुख्तलिफ शहर में एहतजाज। सिंधड़ी में गरोड़ शाख के आबादगार जो पानी कोट खिलाफ एहतजाज। सामारो स्टाप ते धरणो। पूछड़ ताई पानी पहुंचाने जो मुतालबो। मुबारकपुर भरसा मिर्जान शेख में पानी की कोट खिलाफ आबादगार जो मुजाहरो। पूछड़ ताई पानी पहुंचाने जो मुतालबो। फकीराबाद में भी धक्कड़ शाख के आबादगार जो पानी कोट खिलाफ मुजाहरो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुझे दुकान जी बे डरंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

0: मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगर्लस डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94

ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

कें भी दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराणो हुजे उन लाइ बि राब्तो कंदा उन खां अलावा असां कई वारी केसनि खे बि मेमोरी कार्ड में तब्दील करे ॾींदा आहियूं।

कंदकोट में जो जमीनी तकरार था विंधुरियन में जेड़ो लठियो लगन सबब पीरसन कतर दुरानी मेहर थाने जे कच्चे में भैया बिरादरी जी विंधुरियन में जेड़ो थियो जेड़े दौरान लठियो लगन सबब सट वरियन जो मोहम्मद शरीफ भैयो मारजी वियो एक जड़े जे कतल बाद धुरियन में तकरार तेज थी वियो।

दंडवाद में पुलिस जी कार्रवाई मुबैना तौर अफवाह ॼाणियल चार बार बासियाब अदालत चइनी बारनि खे वालदा हवाले करे छॾियो। मुबैना तौर अफवाह ॼाणियल चइनि बारनि सानिया खासकली, हानिया अब्दुल्ला ऐं गुलाम अकबर खासकली खे बाज़ियाब कराए अदालत में पेश कयो। अदालत चइनी बारनि खे संदन वालदा सीमा खासकली हवाले कयो।

कलहार वेझो मीरवा केनाल में विझंदे बुडी वियल लींगर शबीरमला जो लाश हथ मुकामी टोबन गोलाबाद पके वारे मोरी भरसां लाश हथ कयो।

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 4 56 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: फिजिक्स केमेस्ट्री ऐं बायोलॉजी जूं लेबॉरेटरियूं ऑडियो ऐं विजुअल लेक्चर सिस्टम जी सहूलियत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाज़ी ऐं इंग्लिश ते ख़ुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट ज़रिए मेडिकल ऐं इंजीनियरिंग में क़ाबिले तहसीन नतीजा रांदियुनि जो मैदान ऐं उते मुनक़िद थींदड़ मुक़ाबिला तहरीर तक़रीर ऐं ज़हनी आज़माइश जा मुक़ाबिला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणियुनि ऐं प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम ऐं तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमण प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर
1: مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013808743

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम में भलीकार हिन वक़्तु सिलसिलो जारी रखंदासीं कालनि जो, छो जो ब्रेक खां बाद में कालूं वठण जो ई सिलसिलो जारी रहंदो आहे। कालर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआऊं दुआऊं तव्हां भाइरनि जूं दुआऊं तव्हां ॿुधायो। साईं ख़ुशि आहियो खेरा महीने खां वठी माना 8 महीना थी विया आहिनि। 10 महीने जी 10 तारीख़ खां वठी प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिब वटि आया हुआ अॻ में। डॉक्टर साहिब वटि आया हुआ अॻ में कॾहिं कोन? डॉक्टर मंज़ूर साहिब जी ॻाल्हि पियो करियां, उन वटि आया आहियो कोन आया हो? पोइ त तूं परेशान थिए ई न यार, हर भरो वरी ईंदो। 8 महीनो थी वियो सूर जंग में खयूं, तुंहिंजी साईं असांजो रॻ इहा सीटी पई हूंदी चवंदे मूंखे, जेको आहे जंग त सफ़ा उहो लॻी पई आहे। सुन, ईअं ई लॻी पई अथई न? बड़कंदी न साईं, ब्लॉक हूंदी बड़कंदी। इन जो इलाज मौजूदु आहे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिब वटि। ऐं मालिश कंदो आस छा? मालिश कंदो आस? बसि माराए छॾी पंहिंजो पाण खे। डॉक्टर साहिब खां एफ एम तोखे ॿुधावे थो, हिन जी मालिश न करईंसि, मालिश न करईंसि। रहंदो सुजंदी, मालिश करे उन टाइम तोखे सुकून ॾींदी हूंदी। पोइ ॾिसंदो हूंदे त 2 कलाकनि खां पोइ 3 खां पोइ वधीक सुजंदी हूंदी, सोज कंदी हूंदी। सोज करे थी पोइ? मालिश खां पोइ सोज करे थी न? करे थी त न कर न ॾिस। तूं कंहिं सुठे डॉक्टर सां त राब्तो कर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु रोज़ माण्हुनि खे मशवरो ॾियो। किथां थो ॻाल्हाईं? को मसलो ई न आहे, सुभाणे ई हलिया अचो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मेहराबपुर में मौजूदु आहे। 30 साल तजुर्बो अथसि, 30 साल जर्मनी खां पढ़ियल आहे। जर्मनी खां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक आहे, जर्मनी वारनि जी फ्रेंचाइज अथसि। शहर में ई आहे मेहराबपुर में।
2: हा
1: हिते रत बत वारो निज़ाम न आहे, प्रॉपर तरीक़े सां इलाज आहे। अलाह ताला जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। डॉक्टर वॾो डॉक्टर आहे, मशहूरु डॉक्टर
2: आहे।
1: ठीकु आहे, बाबा साम्हूं साम्हूं ईंदे त तॾहिं जेको आहे सो ॾिसी करे तुंहिंजो इलाज शुरू कंदो। ईअं न आहे त एतिरा या एतिरा पंहिंजो हकीमनि वारो ठगनि वारो कमु न आहे, फिक्स न आहे। मरीज़ ते डिपेंड आहे त उनजो मसलो साम्हूं ॾिसबो आहे। वधीक डॉक्टर साहिबु तोखे ॿुधाए थो, एफ एम ॿुध सॼो कुझु। डॉक्टर साहिबु सॼो तुंहिंजो आवाज़ु ॿुधे थो पियो। ठीकु आहे, पाण ॿुधाए थो। डॉक्टर साहिब साईं जेको आहे मुखातिबु आहे, हिन महिल रेडियो में लाइव हले पियो तुंहिंजो आवाज़ जो।
3: अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम सलाम सर साईं।
3: जी जी, मूंखे इहा ॻाल्हि असां तव्हांजी ॿुधीसीं। हाणे तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो, तव्हांखे ॿुधायूं था त एक्चुअली जेकी हीअ तकलीफ़ हूंदी आहे या हींअर हिन वक़्तु हर ॿिए टे शख़्स खे इहा तकलीफ़ आहे ऐं खोड़ सारा पेशंट जहिड़ा तव्हां इन में मुबतला न आहियो, इन खां अॻे खोड़ सारा इन में तकलीफ़ में असां वटि ईंदा आहिनि, रोअंदा वेंदा आहिनि, ख़ुशि थींदा। सो वधीक शिफ़ा अलाह जे हथ में आहे। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त रग जेकी हूंदी आहे उहा ब्लॉक थी वेंदी आहे। पोइ जीअं अवां ग़लती कई आहे, कंहिं वटि ॿुध सुध वियो, किथे रत कढाए आयो, के घणा ब्लेड हणाईंदा आहिनि, के ॾंभ ॾियारींदा आहिनि, के छिकू डारींदा आहिनि। हाणे बि हिकिड़ी दोस्त शाम बि मूंसां ॻाल्हायो त उन सां बि इहो ई जेको आहे सो मसइलो हुयो। सो उनखे बि असां इहो ई ॾस ॾिनोसीं त हर पेशंट जी कंडीशन अलॻि हूंदी आहे, उनजी ट्रीटमेंट जेको इलाज उनजो इलाजु थींदो आहे, मेडिकल में उनजो ऑपरेशन थींदो आहे, असां वटि हिन जी ट्रीटमेंट थींदी आहे। बाक़ी ॿुध सुध ते जेके तव्हां कमु कराइनि उहे थींदा आहिनि, जेके उहे इंतिहाई ग़लति आहिनि। अॻिते हली माण्हू रग जेकी आहे उहा डेमेज थी वेंदी आहे, पोइ हलण खां बि रहिजी वेंदो आहे, उथण खां बि रहिजी वेंदो आहे। इन जे करे हीअ हिकिड़ा हसास मसाला हूंदा आहिनि, हिनखे तव्हां सीरियस वठो ऐं जेको आहे सो अहिड़नि माण्हुनि ते तव्हां न वञो जितां तव्हांखे नुक़सानु पहुचे। हिकिड़ो इलाजु करायो, इलाजु 2 महीना हले, 3 महीना हले, 6 महीना हले, ज़ाहिर आहे हर कंहिंजी कंडीशन हूंदी आहे, हर कंहिंजी मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो तकलीफ़ हूंदी आहे, कंहिंखे घणी वरितल हूंदी आहे, कंहिंखे थोरी हूंदी आहे। कंडीशन में थींदो उहाखे ख़बर आहे जेको आहे इहो ई थींदो आहे, करंट लॻंदा आहिनि, सड़ी टंग उहा सड़ंदी आहे, सुन थी वेंदी आहे, सूर थी वेंदी आहे, इहो सॼो रग जेको आहे सो ब्लॉक थियण जे करे आहे। सो इन जे करे मालिश बि इन जे लाइ सख़्तु मनो आहे ऐं इन जे लाइ हींअर को बि ॾस पंधु अजायो आहे, छो जो हिन वक़्तु तव्हां कंडीशन बिगाड़े छॾी आहे, ॾंभ ॾियारे रत कढाए। सो इन जे लाइ इन जी ट्रीटमेंट थींदी असांजी क्लिनिक मेहरापुर शहर में कोटड़ी रोड ते, वधण पोटरा पेट्रोल पंप जे बिल्कुलु साम्हूं मौजूदु आहे। सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदासीं। हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमो छंछरु आचरु। अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक असांजी बंदि हूंदी आहे। सो अव्हांखे इहो ई आहे, तव्हां रूबरू ॾेखारे वञो, वॾी महिरबानी
1: साईं। तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई, महिरबानी। हा हा बिल्कुलु, 6 ॾींहं हूंदा आहियूं, अरबा खमीस जुमो छंछरु आचरु अंगारो ॾींहुं क्लिनिक बंदि आहे। ठीकु आहे मुंहिंजे साईं, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 लाइव पेश कयो पियो वञे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानी मुहबतूं। कॉल जो सिलसिलो जारी ऐं सारी आहे, 0301-2196-851। सखी जाम ॾातार हिन वक़्तु कॉलर लाइन ते मौजूदु हो, जेको बीमारी बाबति पुछी रहियो हो डॉक्टर साहिब खां त हुन जी रग ब्लॉक आहे ऐं हुनखे ॾाढी तकलीफ़ आहे। जॾहिं रग ब्लॉक हूंदी आहे त यकीन सॼी जंग में हिकिड़ो साड़ो रहंदो आहे, तकलीफ़ हूंदी, ब्लड जो रोलेशन बंदि हूंदो, इंसान खे तकलीफ़ हूंदी, त हुनखे पंहिंजे हिसाब सां उहो ठीकु आहे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ वेंदासीं, हिकु ॿियो कॉलर आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। उजरी वारो जेको हूंदो आहे न, असीं इंसान जेको आहे इंसान खे उजरी न आहे हूंदी, हुनखे आफ़री न आहे चइबो, आफ़री ॿी कंहिं शइ खे थी सघे थी या कीअं
2: पेट बि फुकजी वञे त माना कंहिंखे खाऊं था पेट बि अॻे खां आफ़िरियल लॻे थो।
4: हा हा बिल्कुलु
2: जी जी,
4: माना बदहाज़मो पेट भरियल या जेकी शइ खात वरी हाज़मो नथो थिए, वज़न पेट ते, वज़न सीने ते, वज़न जलन हूंदी, मादे जो मसलो। हा बिल्कुलु, तव्हां सां मादे जो मसलो हूंदो। ॿियो छा ॾिसो, माना जिस्म में सूर आहे, बस थकावट ई थकावट, तव्हां चवंदो बसि उथो ई न, सुता पिया हुजनि। हलो माशाल्लाह FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। जी डॉक्टर साहिबु, तव्हां साईं जो सुवाल सम्झी विया हूंदो।
3: जिसे बिल्कुलु भाउ, जेके आफ़री जी ॻाल्हि करे थो, पेट ते भर्थी वग़ैरह ब्लूमिंग चवंदा आहियूं त उहो थी वेंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां उनजा खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि, बज़ाहिरी माण्हू खे शायदि ईअं ई लॻंदो आहे त असांखे हीअ तकलीफ़, लेकिन जेकी बि अहिड़ी का बि तकलीफ़ थिए थी त ज़ाहिरी आहे उहा कंहिं बीमारियुनि जी अलामत हूंदी आहे। हाणे उनजो कहिड़ी बीमारी थी सघे थी, उहो जॾहिं साम्हूं ईंदो, उनखे डाइग्नोस कंदा आहियूं, उनजी हिस्ट्री वठबी आहे त उनजे ख़ानदान में कॾहिं कंहिंखे लिवर प्रॉब्लम त आहे या नाहे, कंहिंखे अल्सर रही आहे नाहे, एच पैलोरी हूंदी आहे, कंहिंखे ॿिया पेट जा मसाला हूंदा आहिनि, उहो जॾहिं पेशंट साम्हूं ईंदो आहे त पोइ जेको
4: आहे ख़बर पवंदी आहे।
3: अहिड़े तरीक़े सां जेको अॼुकल्ह जी बेवक़्तु खाइणु हूंदो आहे, बाज़ारू घणो खाधो हूंदो आहे, उन जे करे बि
4: माण्हू इस्तेमालु करे थो, उन जे करे बि थींदो
3: आहे। चांहि जो इस्तेमालु ज्यादा जेको आहे
4: सुबुह सां चांहि पियो बग़ैर कंहिं नाश्ते वग़ैरह
3: नाश्ते जे
4: तॾहिं बि थींदो आहे
3: तरीक़े सां। या स्मोकिंग जेको आहे सो माण्हू घणी करे थो, या टेंशन माण्हू घणी वठे थो, या निंड माण्हू जी घटि थिए थी, खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि। इन जे लाइ जेके इहो ई ॾिसंदासीं त मुकमल ट्रीटमेंट जे लाइ
4: होम्योपैथिक
3: ट्रीटमेंट कराइनि, रूबरू ॾेखारनि। फ़िलहाल जा जूस ऐं पाणी जेको आहे सो मिक्स करे ऐं वांगो जेको आहे उहो पीअनि इनशा ताला।
4: जी जी भाई, सिंधी में ॻाल्हायो भले।
5: अच्छा जी सर, हिकिड़ो पेशाब जो थोरो मसइलो आहे, माना मां कमु कंदो आहियां जगरनि जो सर।
4: जी जी दादा,
5: पोइ माना पाणी मिसाल ॿ लीटर पीऊं था त पोइ माना अधु लीटर पेशाब थो हुजे।
4: सही।
5: हा, जलन वग़ैरह बि न आहे, माना पेशाब माना बिल्कुलु घटि पियो हुजे।
4: पेशाब घटि थो हुजे माना।
5: जी जी,
4: पाणी घणो था पियो, पेशाब घटि थो हुजे, ईअं था चओ? गर्मी में त पाणी ज्यादा इस्तेमालु ई करणु घुरिजे, तव्हांखे ज़रूरत बि घणी आहे इस्तेमालु करण जी। हू तव्हांखे गुर्दे वग़ैरह जो या मसाने जो को अहिड़ो मसलो त कोन्हे या कंहिं ॿी की तकलीफ़ त न आहे?
5: को
4: बि इशू न आहे। उमिरि घणी आहे तव्हांजी? अच्छा, पंजटीह साल। माशाल्लाह यंग आहियो। ॿुधो एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। जी साईं, डॉक्टर साहिबु।
3: जी साईं, बिल्कुलु देखे ई चवंदासीं त रूबरू ॾेखारनि त वधीक बहितरु आहे। हिकु त जेकॾहिं पंहिंजो अल्ट्रासाउंड उन्हनि जो थियलु आहे त उहो खणी ऐं रूबरू ॾेखारे वञनि त ज़्यादा बहितरु हूंदो आहे। उन खां पोइ जेको आहे सो देखे इहो ॾिसंदासीं त जीअं मां खीरे वंगे जी ॻाल्हि कई त सुबुह जो नेराणे जेको आहे सो ग्रेंड करे खल समेत ऐं उहो जूस उनजो पीअनि, इनशाला ताला उन सां बि काफ़ी जेको आहे सो अफ़ाको अची वेंदो आहे। ऐं पाणी ज़्यादा पीअनि, कची लस्सी करे जेको आहे सो पीअनि, या उन में जेको आहे सो लीमे जो पाणी हूंदो आहे, लीमे जो जूस ऐं पाणी जेको आहे सो मिक्स करे ऐं वांगो जेको आहे उहो पीअनि, इनशाला ताला इहे शयूं हूंदियूं आहिनि जिन सां जेको आहे सो वधीक फस्ट एड जे हिसाब सां फ़र्क़ु पवंदो आहे। बाक़ी अदरवाइज़ जेकी डाइग्नोस जे लाइ मां ॻाल्हि कई त अल्ट्रासाउंड थियलु हूंदो आहे त उन में ख़बर पवंदी आहे त किडनीज़ में छा प्रॉब्लम आहे, त उन हवाले सां जेको आहे सो बहितर इलाज थी सघंदो आहे। वॾी महिरबानी।
4: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, चीह मेहरापुर एफ एम 94 जो ही आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो। कॉलनि जो सिलसिलो जारी ऐं सारी आहे 0301-21-896-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-21-896-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। कॾहिं बि तव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम। हलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मुंहिंजो साईं, आवाज़ु कटिजे पियो तव्हांजो दादा।
5: ड्यूटी हूंदी आहे, हिनमें पंहिंजो 8 कलाक ड्यूटी कंदा रोड ते,
4: हुनजे
5: करे पंहिंजो वॉक वग़ैरह थी कान सघे, टाइम अप थी वञे।
4: 78 किलो वज़न आहे, इहो मुनासिब वज़न आहे यार। तव्हांखे अलॻि महसूसु थिए थो? अच्छा, घणी हाइट आहे तव्हांजी?
3: जेकॾहिं मिसाल ॻाल्हि जो तकलीफ़ महसूसु थिए थी त जीअं चांवर आहे उहो रूटीन में उनखे बंदि करणो आहे, थधो पाणी जेको आहे सो बंदि करणो आहे, नीम गरम पाणी सुबुह जो इस्तेमालु करणु, या ग्रीन टी जेको आहे सो उनमें लीमो विझी ऐं उहो इस्तेमालु करे इनशाला ताला उन सां काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो आहे। ऐं जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त जेके बि अहिड़ियूं जेके सब्जियूं वग़ैरह आहिनि उन्हनि जो इस्तेमालु ज़्यादा जेको आहे करिणो आहे, गोश्त वग़ैरह बंदि करिणो आहे। ऐं वाक जे हवाले सां ज़ाहिर आहे जेकॾहिं वधीक तकलीफ़ महसूसु थिए थी त वाक हुन जे लाइ मुफ़ीद हूंदी आहे, वाक करणु तमामु ज़रूरी आहे। अदरवाइज़ उन जी मेडिसिन्स हूंदी आहे, भलो रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितरु रहंदो।
6: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं मेहरापुर FM 94 जो हीउ आवाज़ असांजे समाज में पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेके सिहत बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, 30 साल तजुर्बो रखंदड़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जे तरह वेंदासीं, ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। 0301-91-8051 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे, 0301-91-8051। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस न आहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज न आहे। बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो, केॾो बि अव्हांखे संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु आहे, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, चहिरे जो रंग सांवरो आहे, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतुनि में वज़न जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। तव्हां कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहिब खां मालूमात वठी सघो था, 0301-91-8051 ते। डॉक्टर साहिबु, अॼुकल्ह जीअं गर्मी जी मौसम आहे, जीअं तव्हां खीरे जो ॾस ॾिनो, इन खां अलावा ॿियूं बि जेको आहे सो बीमारियूं, पर पहिरियां काल जो जे तरफ़ हलूं पिया, कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआ अलहमदा, केरु पियो ॻाल्हायां था? हाजी खान मरी, हुकुम कयो दादा, छा पुछणु चाहींदा? जी दादा, अच्छा, घणनि महीननि जो
7: आहे?
6: अच्छा, 4 महीननि जो आहे। डॉक्टर साहिबु रूबरू खणी अचोसि, ॾेखारे वञोसि, डॉक्टर साहिबु इलाजु ॾींदुसि, रूबरू वधीक बहितरु, छो जो न ॾिठो आहे 4 महीननि

0: जो इन जे लाइ ॾस ॾियण बि माना हिकिड़ी ग़लती हूंदी आहे, तंहिंजे करे रूबरू वारो वधीक बहितर थींदो। ठीकु आहे दादा, बहितर आहे त रूबरू ॾेखारे वञो त वधीक बहितर। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं मेहराबर एफ एम 94 जो ही आवाज़ तव्हांजे समातुनि ते पहुचे पियो। डॉक्टर मंसूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु सिंह जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहिनि, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशन। जेकॾहिं तव्हांखे मसाने जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। तव्हांखे गोॾनि जो सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु आहे, तव्हांखे नक जी हॾी वधी वई, उन जी तकलीफ़ आहे, मादे जो सूरु आहे, मादे जी अल्सर आहे, तिरी तव्हांजी वधियल आहे, या जेको खाओ था उल्टी करे ॿाहिरि कढो था, या वज़न करे थो, या तव्हां चयो था त गर्मी में तव्हांखे का बि शइ वणे ई नथी, तव्हां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु डॉक्टर मंसूर हुसैन मेमण साहिब सां राबितो करियो, उनजी क्लिनिक ते अचो। अलाह ताला जे हुकुम सां तमामु घणनि बीमारियुनि जो इलाजु मौजूदु आहे ऐं अलहमदिल्ला तमामु घणा मरीज़ सिहतयाब थी चुका आहिनि डॉक्टर साहिबु वटि। सो डॉक्टर साहिबु, ॻाल्हि कयूं पिया गर्मी खां बचाव जे लाइ। आउं चवंदुसि तव्हां दोस्तनि खे कुझु मशवरा ॾींदा आहियो, अॻु में बि ॾाढा सुठा मशवरा ॾींदा आहियो, हाणे बि कुझु मशवरा ॾियो त गर्मी खां पंहिंजे पाण कीअं बचाइजे, छो जो हीअ ॿ महीना इंतिहाई ख़राबु हूंदा आहिनि, जून ऐं जुलाई वारा, मई जून जुलाई, इहे गर्मी जे लाइ माना ख़ासि तौर ते कुराड़ो माण्हू आहे या नंढो ॿारु आहे उन जे लाइ ज़्यादातर तकलीफ़ पवंदो आहे।
1: अजी साईं, बिल्कुलु हिन वक़्तु जीअं अवां शुरू में ॻाल्हि कई त गर्मी जो जेको दर्जा हरारत आहे 50 अबो वञे थो पियो, त इन में कोशिशि इहा करणी आहे त ॾींहं जो 11 बजे खां बाद में वेंदे 3-4 बजे ताईं ॿाहिरि न निकिरिजे त बहितरु आहे। कंहिं थधी छांव में जेको आहे सो माण्हू कमु करे, ज़मानो आहे, हलणो बि आहे, लेकिन एहतियात जेको आहे सो तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं ॿाहिरि निकिरणो ई आहे त महिरबानी करे जेको आहे सो पाण खे मथो ढके जेको आहे सो ज़रूरु निकिरिजे, ऐं चश्मे जो इस्तेमालु, जेके बाइक वग़ैरह दोस्त हलाइनि था त उहो चश्मे जो इस्तेमालु ज़रूरु कनि, छो जो जेके सिज जा तेज़ शुआउनि जा जेके किरण आहिनि उहे असांजे अखियुनि ते जॾहिं पवनि था त असांजूं अखियूं मुतासिर थी सघनि थियूं, ख़राबु थी सघनि थियूं, इन जे करे उहो तमामु ज़रूरी आहे। पाणी जो इस्तेमालु तमामु, छो जो हीउ जेको हीट स्ट्रोक लॻंदो आहे पोइ इन में डिहाइड्रेशन थी वेंदी आहे ऐं जिस्म मां पाणी आठ मुकमल ई जेको आहे सो अचानक से ख़तमु थींदो आहे, जंहिंजे करे पोइ माण्हू हाइपो में हलियो वेंदो आहे। हाइपो में वञण जो मक़सदु इहो आहे त माण्हू बेहोश थी वेंदो आहे, ऐं जॾहिं माण्हू बेहोश थी वेंदो आहे त तकड़ि में उहो उतां निकिरणु बेहोशीअ मां ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। इन जे करे पाणीअ जो इस्तेमालु जिते बि माण्हू गॾु जेकॾहिं लॉन्ग ड्राइव ते वञे थो, घणे पंध ते वञे थो, त पाणी जी बोतल पाण सां गॾु ज़रूरु हुजे। वक़्ति वक़्ते सां पाणी जेको आहे सो माण्हू ज़रूरु पीए, लीमो पाणी पीए, उहो तमामु मुफ़ीद आहे। अॼुकल्ह जीअं बहिराड़ियुनि में लस्सी जो इस्तेमालु हिन मौसम में तमामु बहितरु आहे, या मिठाई जो शरबत जेको आहे सो उहो बहितरु हूंदो आहे, या ख़ुश्क आलू बुखारा मिलंदा आहिनि राति जो 4-5 दाणा ख़ुश्क आलू बुखारा, 4-5 दाणा इमली जा यानी गिदामिड़ी जा राति जो पाणी में पिसाए रखो, सुबुह जो नेराने उहो पाणी पियो, अव्हांखे काफ़ी जेको आहे सो अव्हांखे सुधीराई मिलंदी ऐं अव्हांजो जेको गर्मी जो दर्जा हरारत आहे ऑटोमेटिकली घटिजी वेंदो, डिहाइड्रेशन घटिजी वेंदी, उहो बहितरु आहे। गुलकंद जेको आहे सो तमामु बहितरु आहे, राति जो पाणी में पिसाए रखो, ॿ कारा मिर्च नंढिड़ो टुकड़ो मिस्री जो गुलकंद, सुबुह जो जेको आहे सो हुनखे पूड़ी ऐं उहो अछा, इहो शुगर वारे मरीज़नि जे लाइ मनो आहे, बाक़ी ॿियो पेशंट उहे हुनखे इस्तेमालु करे सघनि था। काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो पवंदो, पाणी ऐं जो इंटेक यानी वधायो, पाणी जेतिरो थी सघे ओतिरो तमामु घणो वधायो। हिन गर्मीअ में जेको आहे सो गहरे कलर वारा कपिड़ा या जेको आहे सो थुला कपिड़ा पाइण सां घणनि जा शौक़ीन हूंदा आहिनि ऐं उहे इस्तेमालु कंदा आहिनि, इन सां जिस्म पची सघे थो, गर्मी वधी सघे थी। इन जे करे लाइट क़िस्म जा कपिड़ा जेको आहे सो पायो, नरम सॉफ्ट कपिड़ा पायो, त इन सां बि जेको आहे सो अव्हांखे गर्मी खां बची सघो था। ऐं इहो ई जेको आहे सो रस्तो आहे, ॾींहं में 2-3 दफ़ा तव्हां विझी सघो था, उन सां अव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो पवंदो। बजाए गोश्त वग़ैरह इन सीज़न में खाइण जे सब्ज़ियूं इस्तेमालु कयो, उहे अव्हांजे लाइ तमामु मुफ़ीद आहे। साई तूरी तमामु थधी भाॼी आहे ऐं कद्दू जी भाॼी तमामु बहितरीन आहे, इहे जेको आहे सो तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। खीरो वंगो फारवा आलू बुखारा ज़रदालू इहे अव्हांजे लाइ, पपीतो तमामु बहितरीन हिन मौसम में ही अलाह ताला जो हिकिड़ो करशमो आहे, अलाह ताला जा हिकिड़ा देन आहे, अलाह ताला जा तोहफ़ा आहिनि अवां जे लाइ। ई मखसूस हिकिड़ो टाइम जे लाइ इहे शयूं अचनि थियूं ऐं पोइ जेको आहे सो हली वञनि थियूं। इन मां जेतिरो थी सघे त ओतिरो तव्हां फ़ाइदो तमामु घणो वठो, त जीअं अवां जे जिस्म में जेको आहे सो जेकी पाणीअ जी खोट डिहाइड्रेशन थी वञे थी या जेकी कमज़ोरी थी वञे थी, माण्हू जिस्म न ढाल थी वञे थो, उहो जेका सो उन खां बची सघो था। ऐं इहो करण सां अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी सघे।
0: तमामु बहितरीन डॉक्टर साहिबु। ऐं अव्हां जेके फ्री ॾींहुं चेकअप कंदा आहियो उहे बि असां दोस्तनि खे ॿुधायो आहे आख़िर में कुझु कयो आहे।
1: अॼु साईं प्रोग्राम जे शुरूआत में विच में अव्हां बि जेको आहे सो पेशंट्स खे, दोस्तनि खे, लिसनर्स खे ॿुधाईंदा आहियो, असां बि ॿुधाईंदा आहियूं। वरी ॿीहर ज़रूरु जेको आहे सो इहो नोट कराईंदा हलूं, छो जो घणा अंगारे जे ॾींहुं असां वटि फ़ोनूं कंदा आहिनि क्लिनिक ते, लेकिन अंगारे जो ॾींहुं असांजी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, इहो थोरो ज़हन में हुजे। ऐं उनखां अलावा टे ॾींहं असां वटि चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जेके हज़रात उन्हनि जेके ग़रीब हज़रात आहिनि उन्हनि मां फ़ाइदो वठी सघनि था। मिसल जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचार जो ॾींहुं असांजी टे ॾींहं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, दवाऊं अलबत्ता पेशंट वठंदो आहे। उन खां पोइ जेको टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं। ऐं क्लिनिक जो हंधु जेको आहे सो अव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, मशहूरु आहे, हिन वक़्तु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अव्हांजे शहर मेहरापुर में कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोट आहे पेट्रोल पंप। अव्हां जीअं जेको आहे सो कोटड़ी खां ईंदो त कार्नर ते ई जेको आहे सो पंप आहे, उनजे साम्हूं जेको आहे सो क्लिनिक आहे। ऐं नंबर अव्हांखे पुकारियो वियो आहे, ॿुधायो वियो आहे 0301-2196-8241। 24 कलाक ई खुलियलु हूंदो आहे। सिर्फ़ु इहा महिरबानी कंदा कयो जेके दोस्त राति जेको आहे सो ईअं वांद कई वारी फ़ोनूं कंदा आहिनि, उन में जेके असांजो कमु वारो पेशंट हूंदो आहे, जेको ज़रूरी जेके मसइलो हूंदो आहे उहो रहिजी वेंदो आहे। छो जो ज़ाहिरी आहे त हर को माण्हू मसरूफ़ हूंदो आहे, पंहिंजे कमनि कारनि में हूंदो आहे। फ़ोन सिर्फ़ु असां उन्हनि खे नंबर ॾिना आहिनि त जेके जिनखे तकलीफ़ आहे त जीअं असां उन्हनि खे आगाही ॾेई सघूं ऐं हू उन मां फ़ाइदो वठी सघूं,
0: उन मां फ़ाइदो वठी सघूं। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। इन हिते अॼोको प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान एडवोकेट हाकिम अली जिस्काणी खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान, अलाह वाहि।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: में बिजली घर सोलर पे और विंड पे लगाने नहीं देता, तो ये डिलेमा मुझे समझ नहीं आता कि क्या है और कब ये खत्म हो। जहाँ पे बल्दियाती निज़ाम सिरे से नहीं है, वो बड़े रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं और पता नहीं क्या से क्या कह रहे हैं। इवन इस्लामाबाद में नहीं है, आपको पता है बल्दियाती निज़ाम, और सिंध में बल्दियाती निज़ाम है, उसमें बेहतरियाँ चाहिए, उस कभी हमने इनकार नहीं किया। और हम हमेशा ज्यादा एम्पावर करने की बात करते हैं, लेकिन
4: वफ़ाक़ी हुकूमत गुज़िरियल माली साल में सिंध खे हिसे खां 83 अरब रुपया घटि ॾिना आहिनि। गुज़िरियल माली साल 2025-26 में सिंध खे वफ़ाक़ खां 175 अरब रुपया मिलणा हुआ। कराची में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त 30 जून 2026 ताईं सिंध खे वफ़ाक़ पारां सिर्फ़ 91 अरब रुपया मिलिया आहिनि। सिंध में बलदियाती निज़ाम मौजूदु आहे जंहिंमें बहितरी आणण जी ज़रूरत आहे। सिंध में 12 खां 18 कलाकनि ताईं लोड शेडिंग थी रही आहे। वफ़ाक़ असांखे सोलर ऐं विंड ज़रिए बिजली घर लॻाइण जी इजाज़त न ॾेई रहियो आहे।

0: आहिनि ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ
2: 0301-399-2836।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड में रापर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

0: पख़्तूनख़्वा ऐं बलोचिस्तान समेत मुल्क जे मथाहनि इलाइक़नि में चौमासे जा वसकारा शुरू थी विया। हेठाई वारा इलाइक़ा पाणीअ हेठि बलोचिस्तान जे इलाइक़े सोप में तूफ़ानी बरसाति सबबि घर जी छित किरी पई, ॿ ॼणा फोत, चार ज़ख़्मी। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में बरसाति सबबि शाहराह रेशम समेत ॿिया रस्ता पाणी हेठि, नदियुनि ऐं बरसाती नालनि में बि बोड वारी सूरतहाल। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे इलाइक़े भाड़ा में विंड किरण सबबि ॿ ॿार फोत थी विया, टे ज़ख़्मी, 27 घर मुतासिर। मौसमियात खाते पारां सिंध में बि 3 ऐं 4 जुलाई ते बरसाति जे कती थियल। नाज़रीन, ही हुई हिन वक़्त जूं ख़बरूं। हाणे वठंदासीं शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक खां पोइ मां प्रोग्राम ॾिसी सघंदा इनसाइट विथ नाज़िया मीर। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़।
1: सोलर ऐं बैटरी

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सोम।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100

0: 1-800-283-8743।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88

अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94। मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।

0: ठीक है?
1: हमारे प्यार की निशानी।
0: तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो।
1: हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। We both love each other।
0: देखो दिशा, दोस्ती से बढ़के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। दिशा, दिशा प्लीज। I'm sorry।

इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा ऐं बलोचिस्तान समेत मुल्क जे मथाहन इलाइक़नि में चौमासी जा वसकारा शुरू थी विया। हेठाई वारा इलाइक़ा पाणी हेठि, बलोचिस्तान जे इलाइक़े ज़ोब में तूफ़ानी बरसाति सबबि घर जी छित किरी पई। पजड़ा फौज चार ज़ख़्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बरसाति सबबि चारा रेशम समेत ॿिया रस्ता पाणी हेठि। नदियुनि ऐं बरसाती नालनि में बि बोड वारी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा जे इलाइक़े बाड़ा में वञ किरण सबबि ॿ ॿार फोत, टे ज़ख़्मी, 27 घर मुतासिर। मौसमियात खाते पारां सिंध में बि 3 ऐं 4 जुलाई ते बरसाति जी अॻकथी थियल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि चौमासी ऐं माहौलियाती ख़तरनि बाबति इजलास। एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी जोड़ण जो फ़ैसिलो ऐं NDA में चेयरमैन खे चइनी सूबनि आज़ाद कश्मीर ऐं गिलगित जो दौरो करण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त दरियानि जे लंघनि ऐं बोर्ड जे रस्तनि तां कब्ज़ा ख़तम कया वञनि। कौमियाबी तहफ़ुज़ लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत वॾी रक़म रखी आहे। बरसातनि ऐं बोर्ड जी तबाहकारियुनि खां बचण लाइ अॻुवाट क़दम खणण ज़रूरी आहिनि। अमरीका ऐं ईरान विच में टाकड़ी ज़रिए कतर में ॻाल्हियूं जारी। परडे॒ही ख़बरू इदारे मूजिबि ॻाल्हियुनि जो महिवर अपना हुर्मुस ऐं ईरान जे मुंचमद असासा आहिनि। अरब मीडिया मूजिबि ईरान ऐं अमरीका में हलंदड़ ॻाल्हियुनि खे गुझो रखियो पियो वञे। ॻाल्हियुनि दौरान अमरीकी ऐं ईरानी नुमाइंदनि जी सिधी मुलाक़ात जो इम्कान नाहे।

0: खिते में अमन लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। ईरान सां मामला बहितरीन अंदाज में अॻिते वधी रहिया आहिनि। ईरानी वफ़द सां सुठियूं मुलाकातूं थियूं आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त खिते में अमन ज़रिए ई माशी ऐं सियासी इस्तेहकाम मुमकिन आहे। ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे। ईरान जो एटमी प्रोग्राम तबाह करण खां पोइ ते न हटंदासीं। तेहरान खे एटमी प्रोग्राम तां हथ खणण वारे रस्ते ते हलणो पवंदो। आलमी सतह ते तेल बि सस्तो थी रहियो आहे। इसराइल हिकु भेरो ॿीहर ईरान खे निशानो बणाइण जी धमकी ॾेई छॾी। इसराइल जे दिफ़ा वारे वज़ीर इसराइल कॉटिस चयो आहे त ईरान ते पहिरीं बि ॿ भेरा हमला करे चुका आहियूं, ज़रूरत पवण ते टीहर बि हमिलो करे सघूं था। इसराइली फ़ौज लेबनान, शाम ऐं ग़ज़ा में अणॼातल मुदे ताईं मौजूदु रहंदी।
1: الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوات بسيطة، من حجز نطاق إلى بناء موقع إلكتروني وإعداد بريد إلكتروني وتأمين تواجدك على الإنترنت، نحن هنا لدعمك. لا تحتاج لأن تكون خبيرا تقنيا، كل ما تحتاجه هو نقطة انطلاق. علامتك التجارية تبدأ هنا مع GoDaddy.
0: असांजी अवाम या क़यादत खे कंहिं बि ख़तरे जो जवाबु तकिड़ो ऐं भरपूर हूंदो। ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास इराक्षी चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश्त वाज़ह ऐं सभिनी लाइ आहे। अमरीकी सदर तलबीब में मौजूदु माण्हुनि खे पटो न विधो त तेहरान खेन सबक सेखारींदो। ईरान शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जी आख़िरी रस्मनि जी शेड्यूल जो ऐलान करे छॾियो। ईरान में 6 जुलाई ते आम मोकल जो ऐलान, 8 जुलाई ते मुल्क में योम सोग मल्हायो वेंदो। ईरानी हुकूमत जे तर्जुमान चयो आहे त शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मण जूं आख़िरी रस्मूं 4-8 जुलाई ताईं तेहरान, कुम ऐं मशहद में अदा कयूं वेंदियूं। शहीद आयतुल्ला खामनाई जे मण खे 8 जुलाई ते मशहद में मिटी माउ हवाले कयो वेंदो।
2: मुझे जहां तक याद पड़ता है 175 अरब रुपए हमें मिलने थे, जो उनका रिवाइज एस्टिमेट है ना, उसके हवाले से 175 बिलियन ड्यू था और हमें 30 जून को 175 बिलियन आना था। जो रिवाइज एस्टिमेट के हवाले से, मैं गलत नंबर नहीं देना चाहता, उससे काफी कम आया है, खाली 95 बिलियन के करीब आया, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ये रहा 91 बिलियन और 25 मिलियन आया। 91 बिलियन तो तकरीबन 75 और 83 बिलियन जो है वो अभी भी ड्यू है, जो रिवाइज एस्टिमेट के हवाले से, और उस सिलसिले में हम फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग है, इसलिए कि और एक तरफ 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ वफाक हमें बिजली घर सोलर पे और विंड पे लगाने नहीं देता। तो ये डिलेमा मुझे समझ नहीं आता कि क्या है और कब ये ख़त्म हो। जहाँ पे बल्दियाती निज़ाम सिरे से नहीं है, वो बड़े रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं और पता नहीं क्या से क्या कह रहे हैं। इवन इस्लामाबाद में नहीं है, आपको पता है बल्दियाती निज़ाम, और सिंध में बल्दियाती निज़ाम है, उसमें बेहतरियाँ चाहिए, उस कभी हमने इनकार नहीं किया और हम हमेशा ज्यादा एम्पावर करने की बात करते हैं। लेकिन
0: वफाकी हुकूमत गुज़िरियल माली साल में सिंध के हिस्से का 83 अरब रुपया घटि ॾिना आहिनि। गुज़िरियल माली साल 2025-26 में सिंध के वफ़ाक खां 175 अरब रुपया मिलणा हुआ। कराची में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त 30 जून 2026 ताईं सिंध के वफ़ाक पारां सिर्फ़ 91 रुपया मिलिया आहिनि। सिंध में बलदियाती निज़ाम मौजूदु आहे, जंहिंमें बहितरी आणण जी ज़रूरत आहे। सिंध में 12-18 कलाकनि ताईं लोड शेडिंग थी रही आहे। वफ़ाक असांखे सोलर ऐं विंड ज़रिए बिजली घर लॻाइण जी इजाज़त न ॾेई रहियो आहे। पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो। पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में कार्रवाई बाबति भारतीय इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान शहरियुनि जे तहफ़ ऐं सलामती लाइ ज़रूरी क़दम खणंदो रहंदो। भारत अफ़ग़ानिस्तान जी सरज़मीन तां पाकिस्तान ख़िलाफ़ दहशतगर्द सरगर्मियुनि में मुलविस रहियो आहे। भारत दहशतगर्द तनज़ीमनि जी अफ़ग़ानिस्तान में सरपरस्ती बि करे रहियो आहे। पाड़ेसरी मुल्कनि में दहशतगर्दीअ खे हथी ॾींदड़ भारत जा बयान खिल जोॻा आहिनि। सेनेट जी अक़लियती मामलनि बाबति क़ाइम कमेटी जो सिंध सेक्रेटरिएट में अहम इजलास। आई जी सिंध जी गैर हाज़िरी ते मेंबर्स पारां कावड़ जो इज़हार। कमेटी चेयरमैन दिनेश कुमार चयो त एजेंडा में प्रिया कुमारी अगवा केस जहिड़ो अहम मामलो शामिल हुजण बावजूद आईजी सिंध जे शरीक न थियण ते हैरत आहे। प्रिया कुमारी जे अगवा ते समूरी दुनिया में शर्मसारी थी रही आहे। सिंध हुकूमत प्रिया कुमारी वारे केस संजीदा न थी त वफ़ाक खे जीआईटी जोड़ण लाइ चवंदासीं। सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़तम न थी। आबादगारनि जो मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। सिंधड़ी में गरोड़ शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। सामारो स्टाप ते धरणो। पूछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुबारकपुर भरिसां मिर्ज़ान शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो। पूछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। फ़कीराबाद में बि धकड़ शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो। धकड़ शाख जे पूछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई मां अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3583-569।

0: रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाए 0303-85-569-0300-33-8-5-69।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो D-Skin Beauty Cream. Asli Glow, har din ka show.

0: स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।